मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता करेला की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।

किसान भाइयों नमस्कार। करेले की खेती संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। इसके फल को सब्जी के रूप में पकाकर, फ्राई करके, करी और कलौंजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके फल और रस को दवाओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज के लिए यह रामबाण दवा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा करेला के कुछ प्रस्तावित किस्में हैं, उनमें पूसा बीसे और पूसा दो मौसमी प्रमुख हैं। कोयम्बटूर लौंग किस्म कृषि अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई है। अर्क हरित यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित की गई है।

0: जो है वो जून जुलाई है। 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। एक जगह पर 2 बीज 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बोने की दूरी लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हैं। अधिक फैलने वाली किस्मों को लाइन से लाइन 2.5 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। सामान्य रूप से 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद को खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोते समय तथा नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा बोने के 1 से 1.5 महीने बाद जड़ के पास टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। गर्मी की फसल को हर 5वें दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन आपकी ये फसल बरसात की फसल होगी इसलिए इसमें सिंचाई कम करने की आवश्यकता होगी। यदि सूखा पड़ जाए तभी सिंचाई करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वर्षा के द्वारा ही सिंचाई होती रहेगी। जाड़े के मौसम में यदि ये फसल चली जाए तो उस समय जो है हर 8वें दिन सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। फलों की तुड़ाई में भी आप ध्यान रखें कि मुलायम एवं छोटी अवस्था में ही फल जो हैं उन्हें तोड़ लेना चाहिए। तुड़ाई बोने के 75 से 90 दिन बाद शुरू हो जाती है। यह कार्य हर 3रे दिन करनी चाहिए। इसकी उपज जो है 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बीमारियां इसमें कद्दू वर्गीय फसलों की तरह ही लगती है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों के ऊपर कवकों की उपस्थिति देखी जाती है, धब्बे भी पड़ते हैं, पत्तियां जो हैं वो सूखती हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप सल्फर चूर्ण का बुरकाव करें, कैराथिन दवा का भी प्रयोग कर सकती हैं। लाल कीड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान करेला की फसल को करता है। आप देखेंगे कि जब करेला में फल तैयार होते हैं उस समय अनेक बड़े बड़े कीड़े पौधे के ऊपर बैठ जाते हैं और उससे करेला की फसल जो है वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। उस समय आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा। ज्यों ही आप खेत में अपने करेला के पौधे के ऊपर 1 या 2 कीड़े की उपस्थिति देखें तुरंत आप सचेत हो जाएं और उस समय जो है इंडोसल्फान 35 cc दवा या अन्य सुरक्षित कीटनाशी दवाएं जैसे मैलाथियन दवा है इसका आप छिड़काव करें, 1 या 2 छिड़काव करें। इससे जो है कीड़े जो कि पौधे के ऊपर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे और आपकी करेला की फसल जो है वो सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा अन्य कीड़े भी लगते हैं जिसमें पत्ती खाने वाला कीड़ा भी है, तो उसके लिए भी आप इंडोसल्फान या मैलाथियन दवा का छिड़काव करें तो ज़्यादा लाभ होगा।
1: आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता करेला की खेती। वार्ता का अर्थ है श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: för ett när. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर

0: जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोवोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्स और FM 100.1 मेगाहर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: आकांक्षा। कई सौ वर्ष पहले की बात है, राजधानी दिल्ली के पास ही जंगल में एक फकीर छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। सेवा को धर्म का पर्याय मानकर कुटिया में पधारे सभी आगंतुकों का भरपूर आदर सत्कार करते थे, लेकिन धन की कमी उनके इस पुनित कार्य में बाधक थी। फकीर ने सोचा, क्यों ना बादशाह अकबर से थोड़ा धन मांग लिया जाए, ताकि अतिथियों के स्वागत में धनाभाव के कारण लज्जित ना होना पड़े। ऐसा विचार कर वे दरबार में पहुंचे तो देखा कि बादशाह अकबर नमाज अदा करते हुए खुदा से कह रहे थे कि ऐ खुदा, तू मुझे और भी दौलतमंद बना, मेरे साम्राज्य का विस्तार कर, मेरी खुशियों में इजाफा कर, आदि आदि। फकीर ने जब ऐसा सुना तो वे उठकर चलने लगे। तब तक बादशाह की इबादत पूरी हो चुकी थी। फकीर को जाता हुआ देखकर बादशाह ने पूछा, आप तो मुझसे मिलने आए थे लेकिन बिना मिले ही चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? फकीर ने कहा, जब तुम ही धन दौलत और साम्राज्य के भिखारी हो तो एक भिखारी के सामने हाथ क्या फैलाया जाए। यह सत्य है कि इस दुनिया में चाहे किसी को कितना भी धन दौलत या मान सम्मान क्यों ना मिल जाए, व्यक्ति की आकांक्षाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में, जो व्यक्ति गरीब होता है उसे ही अधिक की चाह होती है। ऐसी आकांक्षा सही मायने में विभत्स होती है। जब तक हमें कुछ उपलब्धि पाने की आकांक्षा होती है, भले ही वह किसी भी स्तर पर हो, तब तक वहां पर क्रोध, क्षोभ, गुस्सा, शोक, भय आदि जैसे नकारात्मक भावों की प्रधानता होती है। यदि माध्यम या साधन गलत है तो उसके परिणाम भी गलत होंगे। यदि हमारी आकांक्षा सकारात्मक है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, साथ ही हमारा कर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि इच्छाओं के भंडार से ही विचारों का लावा फूटकर निकलता है। बुरा कर्म करने वाले व्यक्तियों पर किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि उनकी आकांक्षा ही बुरी थी। हम धन, पद, यश, ज्ञान, प्यार, व्रत, नियम एवं साधना आदि से स्वयं को भरते रहें तो भी अपने को भर ना पाएंगे, क्योंकि भीतर तो विराट शून्य है। विजयश्री बनने की आकांक्षा उचित अनुचित की सीमा समाप्त कर देती है। प्रेमचंद ने कहा है, असीम आकांक्षा मर्यादा का उल्लंघन कर बैठती है। यदि हम आकांक्षा की प्रकृति को समझ जाएंगे तो फिर इसकी जगह प्रेम लेगा और यही हमारी आंतरिक विजय होगी।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

0: भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें सुनिए भेंट वार्ता, किडनी फेल्योर, कारण, लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा और भेंटकर्ता सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं किडनी फेल्योर के कारण, लक्षण और इसके बचाव के बारे में। और इसकी जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: हाँ, धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम किडनी फेल्योर की बातें करते हैं तो ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी स्थिति आती है, कौन से कारण होते हैं जिसके कारण किडनी हमारे फेल्योर की तरफ बढ़ने लगते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं।
2: जनरली जो कॉमन कारण हैं, इसमें से अगर किसी का किडनी फेल हो रहा है तो उसमें पथरी की समस्या होना या जन्मजात रुकावट होना, या नहीं तो मतलब कि ज़्यादा दर्द की गोलियाँ खाते खाते किडनी पर असर हो जाना, या नहीं तो आजकल जो और एक कॉमन बीमारी है डायबिटीज के कारण भी किडनी फेल होने की संभावना रहती है।
1: तो आपने कहा कि पथरी के कारण भी किडनी फेल्योर हो सकता है, तो ये पथरी हमारे किडनी में किस कारण से बन जाते हैं?
2: जनरली पथरी बनने का कारण होता है कि खान पान में जो हम लोग वेस्टर्न लाइफ स्टाइल आजकल में चले जा रहे हैं, वेस्टर्न खाना खाते जा रहे हैं, उसी के कारण पथरी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कम पानी पीना, नमक ज़्यादा खाना, जनरली आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा है और फास्ट फूड में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उस कारण से पथरी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। और चूंकि आजकल नॉनवेज डाइट का सेवन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भी पथरी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।
1: जी, यानी कि मांसाहार और जंक फूड का इस्तेमाल हम कम करें तो पथरी कम बनेगा।
2: हाँ
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जब किडनी फेल्योर की ओर अग्रसर होता है हमारा, तो ऐसे कौन कौन से संकेत, ऐसे कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में महसूस होने लगते हैं जिससे कि हम पहचान सकें?
2: मैं इस रीजन में आकर के यही महसूस किया हूँ कि किसी को अगर पथरी होती है तो वो साल, दो साल, तीन साल तक किसी न किसी

0: वैद्य से, हकीम से, मतलब उसको गलवाने का ट्राई करते रहते हैं,
1: अच्छा
0: जिसकी वजह से किडनी रुकावट में बहुत दिनों तक रहते रहते उसके फेलियर का चांस बढ़ जाता है।
1: और कुछ ऐसा दर्द महसूस होगा, कुछ ऐसी सूजन
0: भी,
1: वगैरह हो
0: हाँ,
1: सकती है क्या?
0: जब भी किडनी में दर्द वगैरह उठ रहा है, यानी किडनी फंक्शन कर रहा है,
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन दर्द को इग्नोर करके, दर्द की दवा खा करके, मतलब दर्द जब शांत हो जाता है तब किडनी फेलियर की तरफ अग्रसित हो जाता है। जब फेलियर होगा तो वो साइलेंट हो जाएगा, और
1: अच्छा
0: साइलेंट होने के बाद शरीर में सूजन वगैरह चालू हो जाएगा। यानी
1: अच्छा
0: जब तक वो दर्द दे रहा है तो आप उसका निवारण कीजिए, दर्द आराम हो गया तो यानी कि वो अपनी खतरे की घंटी बजाना भी बंद कर दिया है।
1: अच्छा तो किस हिस्से में दर्द होता है शरीर में?
0: जनरली बाएं कमर या दाएं कमर में होगा, अगर जिस तरफ की किडनी में पत्थर होगा तो।
1: जी, यानी कि इस दर्द को हम साधारण दर्द ना समझें और इसका उचित उपचार किसी यूरोलॉजिस्ट से ही जाके करवाना चाहिए।
0: जी, मेरा कहना है कि दर्द का खत्म होना पथरी खत्म होना नहीं है।
1: जी,
0: दर्द तो आपको दवा से भी आराम हो सकता है, और किडनी अपना कोशिश करते करते, पत्थर निकालने की कोशिश करते करते भी वो शांत पड़ जाता है। यानी दर्द का निवारण ना करें, पथरी का निवारण करें आप।
1: या किडनी फेलियर किस कारण हो रहा है उसकी जांच
0: हाँ, उसकी
1: करवाएं।
0: जांच करवा
1: जी
0: करके आप मतलब उसका निवारण करें।
1: जी तो अंत में डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बचाव के लिए, कि किडनी फेलियर की ओर ना जाए, यानी शुरुआती कारण ही ना बने हमारे शरीर में, इसकी बचाव के लिए हमें कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
0: अगर मैं पथरी को ध्यान में रख करके बताऊं तो आप पानी थोड़ा अच्छी मात्रा में पिए, गर्मी के दिन में और थोड़ी ज़्यादा कर लें, जो कि आपको पेशाब मतलब एडिक्वेटली करीब 5 से 6 बार एडिक्वेट मात्रा में हो रहा हो। और उसका सबसे आसान तरीका है समझने का कि पेशाब आपका एडिक्वेट और पथरी नहीं बनने का लक्षण होगा कि सादा पेशाब होना चाहिए आपको,
1: जी
0: वो गहरा पीला रंग का नहीं होना चाहिए। वो होता है कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उसमें पथरी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, मांसाहारी आहार का थोड़ा कम करें। और किडनी फेलियर जैसे कि और शुगर वाले मरीज होते हैं, उनमें भी मैंने कॉमनली देखा है कि शुगर की दवा ले रहे हैं, और जब मतलब कि 1-2 बार वो माप करवाए अपना शुगर, जब वो नॉर्मल हो गया तो उन्होंने बंद कर दिया।
1: अच्छा
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, किडनी फेल्योर, कारण, लक्षण और बचाव। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा और भेंट करता सचिन कुमार। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदेश्री।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्जवल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं।

वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

रामचरित मानस गान आप सुन रहे थे। कलाकार थे लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदेश्री। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर बाल मंजूषा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण होगा। कलाकार होंगे नवल किशोर पंडित एवं साथी। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

12 बजे विज्ञान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 12:30 पर। सुरसंगम कार्यक्रम आप सुनेंगे, कलाकार होंगे बलराम दास मिश्र। 1 बजे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकते हैं, कलाकार होंगी रेणु भारतीय। 1:30 पर अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण आप सुनेंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा, श्रोताओं के पत्रों ईमेलों पर आधारित। 3 बजे आप सुनेंगे सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोकगीत का प्रसारण होगा। कलाकार होंगी संगीता स्नेह।

और 7:52 पर आप सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के तहत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच की कमेंट्री हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य विंशति दिनांकाद अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य विंशति दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत। तो शुरू करते हैं रसरंग से। अनुपमा कुमारी की आवाज़ में सुनिए ये भजन।

श्रोता आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मौसम का मिजाज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 5 से 8 जुलाई के दौरान जिले में 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा

0: हुआ चलने का अनुमान है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: अनुपमा कुमारी की आवाज में सुनिए ये गीत।

0: आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज का इतिहास। 1658 में मुगल शासक औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष में अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बना लिया। 1811 में वेनेजुएला को स्पेनिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई आज ही के दिन। 1977 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलटकर जनरल मोहम्मद जियाउल हक के नेतृत्व में सेना ने शासन की बागडोर संभाली। 1994 में जेफ बेजोस द्वारा अमेज़न की स्थापना की गई और 1996 में स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार क्लोन भेड़ डॉली का जन्म हुआ।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: अनुपमा कुमारी की आवाज में सुनिए ये भजन।

0: श्रोतो, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हिंदी वार्ता कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता मानव जीवन और वन। वार्ताकार हैं अमरेंद्र कुमार पांडे।
1: प्रकृति और मनुष्य का संबंध अत्यंत प्राचीन है। यह संबंध मन प्राणों का संबंध है, हृदय आत्मा का संबंध है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य प्रकृति की गोद और उसके खुले आंगन में विचरण करता रहा है। सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति उसकी सहचरी थी। वह प्रकृति से ही अन्न, वस्त्र तथा रहने के लिए आश्रय प्राप्त करता था। भोर का अंधकार मिश्रित उजाला और सूर्योदय का पावन दृश्य उसे एक निर्वचनीय उल्लास प्रदान करता। प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात बाग बगीचे, वन, नदी, तालाब, पहाड़ में उस महान शिल्पी की छवि तथा उसका अद्भुत शिल्प देखकर मन मयूर नाच उठता। उषा का रंग बिरंगा स्वरूप, पक्षियों का कलरव, शीतल मंद सुगंधित बयार, अनंत नीलाकाश कल कल करते निर्झर उसके मन प्राणों को आंदोलित पुलकित किया करते हैं। यह सच है कि प्रकृति तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां, वायु, जल तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रदान करके मानव का माता के समान पालन पोषण करती है। सब रसों की जननी पृथ्वी भी प्रकृति का ही तो विशालतम दृश्य स्वरूप है। पृथ्वी को माता कहकर संबोधित किया गया है। प्रकृति को माता कहने का अर्थ मानव द्वारा सब कुछ देकर पालन पोषण करने वाली प्रकृति के प्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रदर्शन ही तो है। प्रकृति के उपकारों के कारण ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति के सूर्य, चंद्रमा, नदियों, पर्वतों तथा वृक्षों को पवित्र मानते हुए उन्हें देवत्व का रूप प्रदान करते हुए उनकी स्तुति की है। धीरे धीरे विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का आविष्कारों ने मनुष्य की मानसिकता में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया तथा वह मानव जो प्रकृति वन के प्रति समर्पित था उसे दूर होता चला गया। उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। जिस प्रकृति ने उसे पुत्रवत पाला था वह उसके उपकारों को भूलकर उसका स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगा। उसने वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संतुलन तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाई। परिणामतः प्रदूषण, भूस्खलन, भूकंप, भूसरण, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी अनेक भयंकर समस्याओं का जन्म हुआ और

0: धीरे धीरे इसकी विभीषिका बढ़ती चली गई। आज इन समस्याओं के लिए मानव स्वयं दोषी है। वृक्ष प्रकृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। जरा सोचिए, यदि वृक्ष न होते विभिन्न तरह के रसीले सुस्वादु फल कहाँ से मिलते? कहाँ से मिलते हमें रंग बिरंगे भीनी भीनी सुगंध वाले फूल? कौन देता हमें इमारती लकड़ी? और कहाँ से हमें प्राप्त होती अपने भरण पोषण की अन्य सामग्री? वृक्षों ने मानव सभ्यता और मानव को हमेशा सहायता पहुंचाई है। वृक्ष हमारे परम हितैषी हैं, निस्वार्थ सहायक एवं अभिन्न मित्र हैं। पेड़ पौधों की लकड़ी से बने पालने में शिशु बच्चा झूलता है, इसी की लकड़ी के बने खिलौने से वह खेलता है। जवानी में अनेकों पलंग कुर्सी टेबल आदि उपकरणों का उपयोग करता है तथा बुढ़ापे में इसी की लकड़ी की लाठी लेकर चलता है। वन की उपयोगिता को देखते हुए आज समूचे विश्व में वृक्षारोपण के महत्व को स्वीकारा है। आज पर्यावरण के प्रदूषण की चर्चा चारों ओर जोर शोर से किया जाता है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन छिन्न भिन्न हो गया है तथा अनेक प्रकार की समस्याओं का विस्तार हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए उद्योगों आदि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में शुद्ध हवा का अभाव होता जा रहा है। समय पर वर्षा का न होना भी इसका मुख्य कारण है। साथ ही जमीन में जलस्तर का दूर चला जाना, वनों के कटाव के कारण धरती के सौंदर्य पर तो कुठाराघात हुआ ही है। पशु पक्षियों अन्य वन्य जीवों की अनेक दुर्लभ जातियां प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। नदियों के उद्गम स्थलों व पर्वत पठारों से वृक्षों के कटाव के कारण स्थिति और भी भयावह हो गई है। इससे अनेक प्रकार की औषध वनस्पतियाँ करीब करीब विलुप्त होते जा रही है। आज वृक्षारोपण मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। प्रकृति के वातावरण में एक सहज स्वाभिमान संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वृक्षों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण नितांत आवश्यक हो गया है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के प्रकोप से बचने के लिए यदि कोई उपाय है तो वह लाखों करोड़ों एकड़ भूभाग में वनों को लगाना अर्थात वृक्षारोपण। आज नगरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलता धुआं वातावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। शहरों में वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या तथा उनसे निकलने वाले धुएं से शुद्ध वायु में सांस लेना दूभर हो गया है, जिसके कारण खांसी दमा कैंसर जैसे प्राणघातक रोगों से वृद्धि हो रही है। हमारी संस्कृति में वृक्षारोपण एक पवित्र कार्य माना गया है। हमारे यहाँ तो पीपल तुलसी बरगद केला आम आदि वृक्षों की तो पूजा की जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि 10 गुणवान पुत्रों का जस। भारत सरकार ने वृक्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सन 1952 में वन महोत्सव या वृक्षारोपण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है, जो प्रतिवर्ष जुलाई माह में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। इस दिशा में अनेक सामाजिक संगठन भी सक्रिय है। चिपको आंदोलन इसके लिए प्रशंसनीय कार्य भी कर रहा है। वन प्रकृति के अनुपम देन है। वे अमूल्य प्राकृतिक संपदा के कोष ही नहीं बल्कि नैसर्गिक सुषमा के आधार, अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं की आश्रय स्थली तथा देश की समृद्धि एवं विकास की आधारशिला भी है। वन संपदा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है तथा मिट्टी के कटाव को रोककर भूमि की उपजाऊ शक्ति का क्षय होने से रोकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उद्योग धंधों के कारण वनों की कटाई करना आज के मानव की व्यवस्था से प्रतीत होती है। उद्योग धंधों के विस्तार के लिए भूमि की कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करें? आवास समस्या की जटिलता को किस प्रकार हल करें? वर्तमान समय में बहुमंजिली इमारत अपार्टमेंट कंसेप्ट इसी का देन है। लकड़ी के अभाव में उससे बनने वाले उपकरणों जैसे कुर्सी टेबल आलमारी या अन्य सामग्री के लिए सब प्लास्टिक निर्मित चीज़ें जगह लेती जा रही हैं। वन की कटाई कर लकड़ी प्राप्त करना, भूमि का उपयोग करना अत्यंत ही बहावा स्थिति को पैदा करता है। आज का मानव सब कुछ जानते समझते हुए भी भौतिकवादी क्षणिक सुखों की प्राप्ति की होड़ में अपने मूल जीवन को ही दांव पर लगाकर अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा कर रहा है। वनों की कटाई के कारण अर्थात पेड़ पौधों की कमी के वजह वर्षा की अनिश्चितता प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है तथा इसका औसत भी घटता जा रहा है। वनों के इस कटाव को रोका जाना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि बढ़ती जनसंख्या और उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करना भी आवश्यक हो गया है, लेकिन जितने वृक्ष काटे जाएं उतने ही यदि लगा भी दिए जाएं तो यह अनुपात बना रहेगा। आज सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है, सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है, अनेक सामाजिक संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है। सरकार ने भी वन संरक्षण नीति की घोषणा की है तथा वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जरूरत है हम सभी को इसके लिए ईमानदारी से कर्मनिष्ठ होने की। एहसास तो हम करते हैं, बस जरूरत है प्रयास करने की और उसे मूर्त रूप देने का। हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए हमें सतत प्रयास करने की जरूरत है। एक मिसाल कायम करने का, अपने आने वाली पीढ़ियों में एक संस्कार डालने का, ताकि हर पैदा होने वाले हम अपने बच्चों के लिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसके लिए कम से कम हम एक फलदार छायादार वृक्ष जरूर लगावें जो जनजीवन को भोजन एवं शांति देकर खुशियां प्रदान करें, जीवनदायिनी शुद्ध हवा संतुलित प्रकृति उपलब्ध हो। आज हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि पेड़ पौधे मानव जीवन की संजीवनी है तथा उसके संरक्षण एवं उसके आरोपण में ही स्वयं मानव का हित निहित है। अतः हमारा कर्तव्य है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा प्रदूषण रहित वातावरण का निर्माण करके मानवता तथा उसके भविष्य को सुरक्षित करें।
1: आपने वार्ता सुनी मानव जीवन और वन। वार्ताकार थे अमरेंद्र कुमार पांडे, हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब बारी श्रोताओं फिल्म संगीत की है, तो सुनिए फिल्म इश्क का ये गीत उदित नारायण और विवाह शर्मा की आवाज़ों में। गीत जावेद अख्तर के हैं और संगीत अनु मलिक का।

0: प्यार करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रेल सूचना। भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना। रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर को आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या से चलकर दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका भागलपुर आने का सही समय सुबह 8:05 है, ये गाड़ी 9 विलंब से आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, ये गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 22311 गोड्डा से चलकर लोकमान तिलक तक जाने वाली गोड्डा लोकमान तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वनांचल एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9 अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब सुनिए फिल्म जान का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में, गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत रचना आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, अब आइए समाचार पत्रों की सुर्खियां जानते हैं। सम्राट का बड़ा ऐलान, तेज होगी न्याय व्यवस्था। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे मुख्यमंत्री। 20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। सम्राट सरकार 100 दिन पूरे होने को, पहला मानसून सत्र 5 बैठकें होंगी। वैभव का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। राज्य के उन कॉलेजों में जहां पीजी की पढ़ाई नहीं, उसके शिक्षक अब नहीं करा पाएंगे पीएचडी। पंद्रह से शुरू होगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, 23 को नवमी। फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32, नंबर 64 टीम के वर्डे से एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से जीत सका अर्जेंटीना, प्री क्वार्टर में पहुंचा। बाल बाल बचा चैंपियन अर्जेंटीना। और महिला T20 चौथी बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब सुनिए फिल्म जानवर का ये गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और साथी की आवाजों में। गीत समीर के हैं और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

0: यापनों की बुकिंग
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज, खबरनामा हमारे दिल्ली केंद्र से और 8:48 पर प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं, पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक

0: नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है, उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सांगानेर में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को

0: सुर्खी है 20 से शुरू होगा मानसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर। भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपैटिबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: consultations in 2018.
1: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back, you're listening to Morning News. As part of our series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation with Mr. Devinder Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold this morning at 10:30 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Australian Prime Minister Anthony Albanese has hailed India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit to Australia from 8th to 10th of this month. In a statement, Australian Prime Minister's office said, as world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Mr. Albanese said, Australia's relationship is underpinned by comprehensive strategic partnership and supported by deep economic and cultural connections. He said India-Australia cooperation on trade, defence, security and technology is delivering benefits for both the countries. The India Meteorological Department IMD has said that heavy monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. IMD said, a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal is expected to keep the monsoon active across central India for the next 4 to 5 days. It also said the southwest monsoon is likely to advance into the remaining parts of Haryana, Punjab and Rajasthan, along with parts of Gujarat and the North Arabian Sea over the next 4 days. A severe heat wave is sweeping across the eastern United States, placing significant pressure on power grids, disrupting preparations for FIFA World Cup matches. We have a report.
2: With the heat index expected to exceed 46 degrees Celsius, New York City, the most populous city in the United States, is bracing for unprecedented temperatures, while heat warnings have expanded across the northeastern states and the central Atlantic coast. New York City authorities have introduced a series of measures to address the extreme heat, including converting hundreds of public buildings into cooling centers, deploying volunteers to check on vulnerable groups, and extending the opening hours of the public swimming pools across the city. The U.S. National Weather Service said that due to high humidity levels, the heat index could reach 41 degrees Celsius in Boston, 44 degrees Celsius in Philadelphia, and 45 degrees Celsius in Washington. The agency also forecast record-breaking temperatures during Independence Day celebrations, with the potential for consecutively daily records to be broken, in addition to monthly records and possibly the highest temperatures ever recorded. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
0: On to sports now. In football, France and Morocco stormed into the quarterfinals of FIFA World Cup. We have a report.
3: France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute. France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage-time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. Finals with Vikas Chirag Jha from Sports Desk.
0: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the five-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
4: Thank you, Sayada. Papers have widely noted Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udaan, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूरदराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
6: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
5: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
6: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
5: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली इस स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
7: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
5: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़ी सीमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निजाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
6: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
5: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
6: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
5: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
8: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेश की तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा जखीरा काफी है और इस वक्त जखीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्की सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपए फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
5: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा

0: लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दुरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मौसमी इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफर अव्वल पर जगह दी है। रोजाना इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए से क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी
3: फीस तो देखो
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का,
5: नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ
6: है? मिठाई।
7: RBI कहता है
8: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
10: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
9: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
10: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
9: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
0: इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका था। मुजफ्फरपुर साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
2: दिनांक 5 जुलाई राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में आज कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में 650 से 700 चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक, विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी, नर्सिंग अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं।

0: आसवानी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: समस्तीपुर के मटियौर गंगा तट पर निर्माणाधीन ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु का स्लैब गिरने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पटना स्थित पीएमसीएच रेफर किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने घटनास्थल पर तकनीकी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। भागलपुर जिले में जल संसाधन विभाग ने बांध सुरक्षा और तटबंध कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने प्रयुक्त होने वाले बोल्डर की पर्याप्त मात्रा में भंडारण और क्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थल पर उपस्थित अभियंताओं को कैंप करके कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अररिया जिले के सीमावर्ती गांव के समग्र विकास के लिए VVP2 की समीक्षा की गई। समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल संस्कृति और आजीविका बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1 फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान फर्जी आई कार्ड और BMP हवलदार के दस्तावेज बरामद किए। आरोपी की पहचान जहानाबाद निवासी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न 39वीं राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप पहली रैंकिंग प्राप्त कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। रुद्र प्रताप ने लगातार 8 मैच जीतकर 1 राउंड पहले ही खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के आधार पर रुद्र प्रताप को आगामी विश्व कप और एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चयनित किया गया है। रुद्र प्रताप मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं 16वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए आज राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिला हॉकी संघों को अपने क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का निर्देश दिया। चयन ट्रायल में खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया का पहचान पत्र, सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ आना अनिवार्य किया है। भागलपुर में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी बाल अंडर-15 और अंडर-17 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग में इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल विद्यालय और अंडर-15 वर्ग में RHMTB उच्च विद्यालय बरारी भागलपुर की टीम ने राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता क्वालिफाई किया है। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संचालित उत्खनन कार्य के लिए जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उत्खनन कार्य की वर्तमान स्थिति, प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बलिराजगढ़ केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए आपराधिक कानून पर बोधगया सम्मेलन में मुख्यमंत्री का ऐलान, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक गठित होंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, E20 पेट्रोल से 2 से 6% तक घट सकता है गाड़ियों का माइलेज। दैनिक भास्कर ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अगस्त से बदलेगा DL नियम, लर्निंग लाइसेंस से पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी। प्रभात खबर ने क्रिकेट के बढ़ते सितारे वैभव सूर्यवंशी की भारतीय टीम में डेब्यू से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बिहार का वैभव, भारत का सूर्य। आज अखबार का शीर्षक है, पटना में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और हथियारों के प्रदर्शन को सख्ती, बांकीपुर चुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। राष्ट्रीय सागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2100

0: ₹25 प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। सुनिए फिल्म जननेता का ये गीत। स्वर है श्री कृष्णा और विशाल मिश्रा का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: खुदगर्ज फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत रचना है राजेश रोशन का।

जीत फिल्म का गीत सुनिए, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दो चोर फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह के गीत को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

सुन रहे थे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल मंजूषा।

जय हिंद बच्चों, बाल मंजूषा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी रागिनी। कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा की तरह अमृतवाणी से करते हैं। नेल्सन मंडेला का कथन है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। अर्थात बच्चों, हमारे जीवन में शिक्षा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल पढ़ना लिखना सीखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है। शिक्षा रूपी हथियार हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। ये हमें सही और गलत का विवेक प्रदान करती है और हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। ये हमें आत्मनिर्भर बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा के कारण ही विज्ञान, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति संभव हुई है। एक शिक्षित समाज लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है। शिक्षित नागरिक अपने मताधिकार का सही उपयोग कर राष्ट्रहित में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। इसी कारण शिक्षा किसी भी देश के विकास की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। इसलिए शिक्षा को संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार माना गया है। तलवार और बंदूक जैसे हथियारों के माध्यम से बच्चों, हम केवल युद्ध जीत सकते हैं, पर शिक्षा दिलों को जीतती है, समाज को बदलती है और मानवता को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है। इसलिए बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और दूसरों को भी शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए।

ये, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही एक विकसित समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को संतुलित रखते हैं और वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और तापमान नियंत्रित रखते हैं। इन्हें वृक्षों के संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन प्रभावित हो रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को वृक्षों के महत्व से परिचित कराने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री K.M. मुंशी के द्वारा की गई थी। इनसे पहले राष्ट्रीय वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा वर्ष 1947 में 20 से 27 जुलाई के बीच किया गया। बाद में इसे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया। बच्चों, वन प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। हमारा अस्तित्व वनों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। वे केवल पेड़ों के समूह नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला हैं। वन हमें शुद्ध वायु, जल, भोजन, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और असंख्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। साथ ही वे पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने और करोड़ों जीव जंतुओं के जीवन का आधार हैं। इसलिए वनों का संरक्षण मानव और प्रकृति दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम वनों के कुछ महत्वपूर्ण फायदे के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला ये कि वन हमारे लिए प्राणवायु का प्रमुख स्रोत हैं। वन हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए वनों को पृथ्वी का हरित फेफड़ा कहा जाता है। जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। वन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रित रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा और जल संरक्षण में सहायक। वन वर्षा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। उनकी जड़ें वर्षा के जल को भूमि में समाहित करती हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और जल स्रोतों में लंबे समय तक जल भरा रहता है। मिट्टी का संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है और बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं कम होती है। जैव विविधता का संरक्षण। वन लाखों प्रकार के पशु पक्षियों, कीटों और सूक्ष्म जीवों का प्राकृतिक आवास है। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तभी जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन भी सुरक्षित रहेगा। औषधियों और प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। अनेक औषधियाँ वनों से प्राप्त वनस्पतियों से बनती हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी, फल, गोंद, शहद, बांस और अन्य वन उत्पाद लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। अब हम वनों के क्षय से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में बात करेंगे। वनों के क्षय होने से वर्षा चक्र प्रभावित होता है, परिणाम स्वरूप सूखा, जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ती है। वृक्षों के अभाव में बच्चों मिट्टी बह जाती है, जिससे भूमि बंजर होने लगती है। साथ ही बाढ़, भूस्खलन और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। वनों के नष्ट होने से पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाता है। अनेक दुर्लभ जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। वनों की कमी से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वनों के विनाश से अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से वनों पर निर्भर समुदायों का जीवन संकट में पड़ जाता है। बच्चों, इन समस्याओं से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए,
लगाए गए पौधों की नियमित रूप से देखभाल की जानी चाहिए। अवैध कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। वनों में आग लगने से बचाव के उपाय अपनाए जाने चाहिए। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि हम इन कुछ छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित ही हम अपने वनों को संरक्षित कर पाएंगे। बच्चों, अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद बच्चों अब आइए सुनते हैं बाल समाचार।
1: नमस्कार, मैं विधि शर्मा आज के बाल समाचार के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आधिकारिक तौर पर नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आगे की रणनीति बनाने हेतु शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तर बैठक की अध्यक्षता। भारत के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कुछ हिस्सों में जुलाई में सामान्य से कम बारिश होगी। नीट पीजी परीक्षा के लिए पंजीकरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। यूरोप में भीषण गर्मी की लहर चल रही है और विश्व नेता जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं। नासा ने वेनेजुएला में हाल में ही आए भूकंप से हुए नुकसान को दर्शाने वाली नई तस्वीर साझा की है। ईशान किशन विश्व के नंबर एक T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला T20 विश्व कप के फाइनल राउंड में पहुंच गया है। सरकार भारतीय उत्पादों को अन्य देशों में अधिक बेचने में व्यवसायों की मदद करने के लिए नई योजना बना रही है। भारतीय अंडर-21 जूनियर पुरुष हॉकी टीम के बेल्जियम दौरे का ऐलान हो गया है, जहां मैच 5 से 18 जुलाई के बीच खेले जाएंगे।
0: बच्चों अभी आप सुन रहे थे बाल समाचार और अब आती है आप बच्चों की बारी यानी बच्चों की प्रस्तुति की। तो आइए सुनते हैं बच्चों की प्रस्तुति। तो कृष्णा आज आप अपने दोस्तों के लिए क्या लेकर आई हैं?
2: दीदी मैं कुछ कविताएं और एक कहानी भी लाई।
0: सुनाइए।
2: मेरी कविता का शीर्षक है तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। आज जागो तुम आंखें खोल और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने तितली छूने चली उसे। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है ओस। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। कौन रात में गूथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यों चमचम। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यों दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर फूलों पर पक पक बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दीपावली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाऊं। अगली कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्य बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में। उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा।

0: अंधियारे में अंधकार में कल कहार में बीच धार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घ हार में जीवन के शतशत आकर्षण अरमानों में ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन नीरवता से मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन जीवन को शतशत आहुति में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। दीदी मेरी कहानी का शीर्षक है दूरदर्शी बनो। एक तालाब में तीन मछलियां रहती थी, एक बुद्धि सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि। एक दिन एक मछुआरे ने उस तालाब को संध्या के समय घर आते वक्त देखा तो उन्हें पता चला कि उस तालाब में बहुत मछलियां हैं। आज तक कभी इसमें जाल भी नहीं डाला है, इसलिए यहाँ खूब मछलियां होंगी। इस विचार से उन्होंने तालाब में दूसरे दिन प्रातःकाल मछली पकड़ने की ठान ली। सहस्त्रबुद्धि मछली ने उन मछुआरों की बात सुनकर सभी मछलियों को बुलाया और कहा, आपने तो उन मछुआरों की बात सुन ही ली होगी, रातों रात ही हमें यह तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चल जाना चाहिए, एक क्षण भी देर करना उचित नहीं। तो सतबुद्धि ने भी सहस्त्रबुद्धि की बात का समर्थन किया। उसने कहा, परदेश में जाने का डर प्रायः सबको नपुंसक बना देता है, अपने ही कुएं का जल पिएंगे यह कहकर जो लोग जन भर खारा पानी पीते हैं वे कायर होते हैं, स्वदेश का यह राग गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती। इन बातों को सुनकर एक बुद्धि मछली हंस पड़ी। उसने कहा, किसी राह जाते आदमी के वचन मात्र से डरकर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। सभी मछलियों ने एक बुद्धि की बात मान ली, परंतु सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि अपने परिवार के साथ पास के तालाब में चले गए। दूसरे दिन मछुआरे अपना जाल लेकर आए। उन मछुआरों ने अपना जाल बिछाया और कुछ ही घंटों बाद सारी मछलियां फंस गई और वह मछुआरे खुशी खुशी उन मछलियों को लेकर घर चले गए। और इधर सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। पर उन्हें यह भी दुख था कि उनका एक मित्र जो कि एक बुद्धि था उनके बीच अब नहीं रहा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूर की सोचनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा कहने वाले नष्ट हो जाते।
1: बहुत अच्छे कृष्णा, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई और निश्चित ही हम सभी को दूरदर्शी होना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। धन्यवाद बच्चों इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपकी छोटी सी प्रस्तुति ने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है वनों की उपयोगिता। वार्ताकार हैं डॉक्टर रीता झा।
2: वन जल और थल, सोचो क्या होगा जब नहीं रहेंगे ये तीन। सोचकर ही मन घबरा जाता है ना, आखिर घबराहट भी तो लाजमी है। जीवन चक्र में वन जल और थल सांस को रूह में बनाए रखने का ही तो काम करते हैं। विकास की आंधी दौड़ में मनुष्य प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ करता जा रहा है। अपने सर्वश्रेष्ठ होने का दंभ जो है उसे जंगल अर्थात वन की ही बात करिए तो लगेगा क्या गति है इनको काटने की। कल तक जहाँ नजर आते थे पेड़ पौधे, आज वीरानी पसरी है वहाँ। नजरों के सामने जहाँ देखे हरे भरे जंगल, आज दूर दूर तलक नजर नहीं आती एक भी लताएं। हम अपने आप को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हैं। बुद्धि और बल के भरोसे सब पर राज करने की ख्वाहिश पल पल रहती है। हम काट रहे हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे वन। श्वास लेने की बीमारी से बचने के लिए हम इनहेलर लेकर घूमना

पसंद करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते, यह नहीं प्रयास करते कि एक भी पौधा लगा दें जिससे पर्यावरण प्रदूषण रहित हो जाए। अरे वन है तो हम हैं, यह याद रखें हम इनके हरेक पेड़ पौधों से लेकर टहनी तक हमारी रक्षा ही करते हैं। बहुउपयोगी होते हैं वन, याद रखें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देते हैं वन, हर सुख दुख में साथ होते हैं वन, बारिश में भींगने वाले को छत मयस्सर करवाते हैं तो ठंड से कपकपाने वाले को गर्मी। तुम सोच रहे हो जमाना बदल रहा है तो नए उपकरण आ जाएंगे, लेकिन सनद रहे प्रकृति के सामने सब बेकार हैं। प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, वन संपदा के रूप में प्रकृति से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता आ रहा है वह नियम पूर्वक हमेशा आगे प्राप्त होता रहे, ताकि हमारे समाज जीवन का संतुलन बना रहे, हमारे पर्यावरण की पवित्रता और संतुलन नियमित बने रहे। वन प्रकृति की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। भारतवर्ष भी अपनी प्राकृतिक सुरम्यता रमणीयता के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। इनकी मधुर छाया हरितमा नेत्रों और हृदय दोनों को आनंद से ओतप्रोत कर देती है। विदेशी यात्री पर्यटक भी यहाँ के मनोहारी प्राकृतिक रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति में आदिकाल से ही वनों का महत्व रहा है। केवल भारत ही में नहीं, विश्व भर में वनों का विशेष महत्व है। वैसे भारत में वृक्षों का इतना महत्व है कि यहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है। जंगल एक राष्ट्र की संपदा होती है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जंगलों में अपनी कुटिया बनाते थे और वहाँ पर अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। विश्व में वनों की अत्यधिक उपयोगिता है। जंगल हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। जंगल हमें बहुत सारी वस्तुएं देते हैं। ये हमें घर, फर्नीचर और ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। ये हमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल देते हैं। वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, जैसे फल वाले वृक्ष, औषधीय वृक्ष और उद्योगों में काम आने वाले वृक्ष। चीड़, पीपल व देवदार आदि वृक्ष पहाड़ों पर उगते हैं। हमें रबर भी वृक्षों से ही मिलती है, जो हमारे बहुत काम आती है। हम तारपीन का तेल, औषधीय जड़ी बूटी भी वनों से ही प्राप्त करते हैं। बीड़ी बनाने के पत्ते, जिनसे सरकार को लाखों रुपयों की आय होती है, जंगलों से ही मिलते हैं। ये वृक्ष और अन्य पौधे हमें ऑक्सीजन तथा भोजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। वृक्ष केवल मनुष्यों के लिए ही आवश्यक नहीं, अपितु पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। चिड़िया वृक्षों पर अपने घोंसले बनाती है और अन्य जानवर वृक्षों की पत्तियां व फल खाकर जीवित रहते हैं, तथा वृक्ष इन पशु पक्षियों को शरण भी देते हैं। वन उनके लिए रहने का एक प्राकृतिक सबसे सुलभ साधन है। वनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये भूक्षरण यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अत्यधिक वर्षा अच्छे किस्म की मूल्यवान मिट्टी को अक्सर अपने साथ बहा ले जाती है। ये वृक्ष ही हैं जो मिट्टी के बहने को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष अचानक आने वाली बाढ़ को भी रोकने में मदद करते हैं, और वन ही अकाल नहीं पड़ने देते हैं, अर्थात वर्षा लाते हैं। इन सब गुणों के बावजूद हम वनों के बैरी बन गए हैं और बिना किसी बात को सोचे समझे अंधाधुन वनों के विनाश में लगे हुए हैं। इस मनोवृत्ति को रोकना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े तो इस मनोवृत्ति को जबरदस्ती रोका जाना चाहिए, ताकि देश में ज्यादा वर्षा हो, पर्यावरण वातावरण साफ सुथरा बना रहे और वनों से होने वाली उस आय में भी वृद्धि हो जो हमें वन उपहार स्वरूप में स्वतः देते हैं। वन हमारी अचल एवं प्रकृति प्रदत्त संपदा है। इनको सुरक्षित रखने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कृषि की पैदावार बढ़ेगी, वातावरण और पर्यावरण शुद्ध होगा। वन संपदा एक न्यास है, हम उसके न्यासी हैं। हमें सदा वनों के विकास की बात सोचनी चाहिए और वही करना चाहिए
जिससे उनकी वृद्धि होती रहे और निरंतर फलते फूलते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। पृथ्वी का स्वर्ग हमारी वन संपदा ही है, जो कि वनों में भी मिलती है। निष्कर्षतः वृक्ष

0: हम कह सकते हैं कि विश्व में वनों का सर्वाधिक महत्व है।
1: बच्चों अभी आप सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय था वनों की उपयोगिता। वार्ताकार थी डॉक्टर रीता झा। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का, तो आइए सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए
1: हम फिर से हाजिर हैं।
2: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपनो सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत है अपनो के ई खास आरु अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 308 मा। अपनो सभ्य बाल श्रोता सब के तहे दिल से स्वागत करे छी। आरु आज के ई खास कार्यक्रम के साथे हम मा छे किए अपना सभ्य के प्यारी रेडियो दीदी कंचन। आरु अपनो के साथे छे अपनो के रेडियो साथी
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, आप सभी बाल श्रोताओं का आपका रेडियो साथी ऋषि की ओर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी रेडियो दोस्त मस्त तंदुरुस्त और मजे में होंगे और बारिश के मौसम को तो एंजॉय कर ही रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। दीदी देखो ना, बाहर का मौसम कितना प्यारा और सुंदर है। आज का दिन तो बहुत ही सुहाना लग रहा है दीदी। हल्की हल्की हवा चल रही है और आसमानों में काले बादल छाए हैं। ये जो बारिश का मौसम है ना दीदी, ये बहुत ही मनमोहक होता है और आपको पता है ये मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है।
2: बिल्कुल, हमरो भी ये मौसम बहुते पसंद है। एकरा में हल्का हल्का बारिश, ठंडा ठंडा हवा और ये मौसम के एंजॉय करे में बहुते मजा आवे छे। बाल श्रोता सब, आज अपनो घर में संडे का एंजॉय तो करता ही होते है, साथे में ये मौसम के एकदम खुली का एंजॉय करी रहलो होते। ऋषि तोरा पता छो मौसम के एगो अपनो रंग छे, जे ई मौसम के रंग के साथ घुली मिली जाय छे उ ओकरो सुंदरता के महत्व का समझा लगे छे। आरु ई मौसम में मस्ती करे में भी तो बहुते मजा आवे छे। अगर साथे में मम्मी के हाथ के गर्मा गर्म पकोड़ा आरो भुट्टा ई सब अगर मिली जाए तब तो आनंद ही आनंद, मन एकदम में गदगद हो जाते।
0: हाँ दीदी, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। मुझे भी बारिश का मौसम बहुत ही पसंद है और खास कर बारिश तब अच्छी लगती है जब तपती गर्मी से परेशान हो जाए, तब लगातार बारिश हो तब ज्यादा मजा आता है। बस थोड़ा सा कीचड़ ही मुझे पसंद नहीं आता है। स्कूल जाते समय बारिश, किलकारी आते समय बारिश, बारिश ही बारिश, किस किस और किस किस, इसलिए कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ ऋषि, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल के सामना तक करिए ला पड़ते नी, तब ये असली मौसम के आनंद मिलते। बारिश के मौसम के साथे साथ त्योहार के भी मौसम आ भी गेलो छे। सावन के पावन महीना भी तो आ भी रहलो छे, साथे में ढेर सारा पर्व त्योहार का लेकर आ भी रहलो छे। खूबे मजा आवे वाला छे ई महीना में।
0: हाँ हाँ दीदी, और इसी महीने से तो शुरू होगी त्योहारों की बारिश। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और ढेर सारी छोटे मोटे पर्व, और इन सभी पर्व को हम खुशी से अपने परिवार मित्रों के साथ मनाते हैं। और आपको पता है दीदी, इन सभी फेस्टिवल में से मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन। मुझे रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब मेरी बहन मुझे गिफ्ट देगी।

0: दे।
1: अरे बुद्धू, रक्षाबंधन माता भाई बहन का गिफ्ट दे छे, बहन थोड़ी दे छे भाई का गिफ्ट।
0: मैं तो दीदी अपनी बहन से ही गिफ्ट लेता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में और उससे गिफ्ट लेने में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कहले ऋषि, त्योहार सब मत मजा खूब आवे छे। अपनो भारत देश त्योहारों के ही तो देश छिके, यहाँ पर हर समुदाय के लोग हर पर्व उत्सव का एकदम गर्व के साथ मनाए छे।
0: हाँ दीदी, हम लोग तो अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और गाते हैं, लेकिन आज हम सब अपने कार्यक्रम में पेड़ों के त्योहारों को मनाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रकृति के एक ऐसे उत्सव की जो हमें पेड़ों से प्रेम करना सिखाता है। इस उत्सव का नाम है वन महोत्सव।
1: जी हाँ साथी सब, जखनी हम सब सवेरे उठे छे तो एकदम में ताजा ताजा हवा में सांस ले छे, पक्षी के चहचहाट सुने छे, पेड़ के छांव में खेले छे कूदे छे, तखनी शायद हम ई बात पर ध्यान नहीं दे छे कि ई सब सुख तो हमरा सबके पेड़ पौधा दे रहलो छे।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वर्षा लाने, मिट्टी को बचाने, पर्यावरण को संतुलित रखने और उनके जीव जंतुओं को आश्रय देने का भी काम करते हैं, इसलिए पेड़ों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है।
1: हाँ ऋषि, आरु एकरे कारण भारत में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई यानी कि ई एक हफ्ता के बीच में वन महोत्सव का मनेलो जाय छे। ई उत्सव हमरा सभ्य का याद दिलाय छे कि धरती के हरियाली बचावे ला हमरा सबके योगदान कितना जरूरी छे।
0: दीदी आपको पता है वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी, तब से लेकर आज तक देश भर में लाखों लोग इस सप्ताह के दौरान पौधे लगाते हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाते हैं।
1: अच्छा तो ऋषि तोरा पता छो कि वन महोत्सव कहाँ मनेलो जाय छे?
0: हाँ दीदी पता है मुझे, वन महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, गांवों, शहरों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और समाज के अन्य लोग मिलकर पौधे लगाते हैं। और दीदी इस बार भी हम लोग किलकारी में पौधे लगाएंगे।
1: हाँ ऋषि, सिर्फ पौधा लगावे से काम नहीं चलते, ओकरो देखभाल करना भी बहुते जरूरी छे। जेना के एगो छोटा बच्चा के पाले ला पोसे ला परे छे, उन्हें के एगो छोटका पौधा का पानी, खाद और सुरक्षा के भी जरूरत होय छे।
0: सही कहा दीदी, एक पौधा तभी बड़ा वृक्ष बनता है जब उसकी नियमित देखभाल की जाए, इसलिए वन महोत्सव हमें जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाता है। तो आइए दोस्तों अब कार्यक्रम में हम सुनते हैं वन महोत्सव के इस स्पेशल वीक में इस खास पर्यावरणीय गीत को। तो आइए आनंद लेते हैं गीत।

0: ई पर्यावरणीय गीत तो बहुते सुंदर छले, बहुते जानकारी दे वाला छले कि एगो पेड़ पौधा के देखभाल करना, ओकरा लगाना आरो पेड़ पौधा के प्रति अपना पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना कितना जरूरी छे। ई गीत एगो अनोखा संदेश दे छले। तो श्रोता सब, अपनो सब बताबो, यदि अपनो के आज एगो पौधा लगाए के मौका मिलते तो वो कौन सा पौधा लगेबो?
1: कोई नीम का लगाएगा, कोई आम, कोई जामुन, तो कोई पीपल। हर पौधा प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है।
0: हाँ ऋषि, तो चल आवा ऋषि एगो गेम खेले छे, जेकरा में हम बाल श्रोता सबसे सवाल पूछवे आरु श्रोता सबका एकरो जवाब देना छे।
1: अच्छा दीदी, गेम? तब तो मैं भी खेलूंगा, बहुत मजा आएगा ना गेम में।
0: गेम तो इसने छे कि मजा तो आते। तो चल शुरू करे छे। हम उ पेड़ के नाम बुलवे जेकरा से हमरा सभ्य का कुछ ना कुछ मिले छे, यानी कि तोरा का उ पेड़ के नाम बताना छे। समझी गेले गेम के रूल?
1: हाँ दीदी, मैं तो समझ गया।
0: तो श्रोता सब तैयार छोनी, तो जल्दी जल्दी एकरो उत्तर दा। हम सवाल पूछो आरो फटाफट तो जवाब दा। तो सवाल छे, हम छिए फल के राजा, गर्मी में बच्चा से लेकर बड़का तक सभ्य का बहुते पसंद आवे छिए, हमरो पत्ता के भी पुजलो जाय छे।
1: तो बताइए दोस्तों, कौन सा पेड़, कौन सा पेड़? आम का पेड़।
0: बिल्कुल सही जवाब ऋषि, श्रोता सबके भी जवाब सही होते।
1: अब मेरी बारी दीदी।
0: हाँ हाँ ठीक छो, तो ही बोल।
1: तो सवाल है दीदी, मैं कड़वा हूँ लेकिन बहुत काम का हूँ। मेरी पत्तियाँ फल और छाल औषधि के रूप में उपयोग की जाती है, तो बताओ मैं कौन सा पेड़ हूँ?
0: जेकरो पत्ता कड़वा रही छे, पत्ता तो एक गोर कड़वा रही छे, वो भी नीम के। बहुते कड़वा लगे छे नीम तो, हमरा तनियो को पसंद नहीं छे नीम।
1: लेकिन दीदी, नीम तो बहुत ही उपयोगी होता है।
0: बात तो बिल्कुल सही कहले, श्रोता के भी ये जवाब सही होलो होते। तो चल आवा हम पूछे छियो, हम बहुते विशाल होई छिए, हमरो जटा जमीन तक लटके छे, गांव के चौपाल पर हम अक्सर देखलो जाय छिए, तो बताबो हम के छिए?
1: जिसका जटा बड़ा हो, जो चौपाल में भी रहे। हाँ बरगद। हाँ बरगद का पेड़ तो हर चौपाल हर जगह पे मिल जाता है।
0: बिल्कुल सही जवाब दे ले ऋषि।
1: अब मेरी बारी। मुझे भारत में पवित्र माना जाता है, मैं दिन रात ऑक्सीजन देने के लिए प्रसिद्ध हूँ, बताओ मैं कौन हूँ?
0: यानी भारत में जकरो पूजा करलो जाए छे जे पेड़ के, भारत में पूजा त पीपल के करलो जाए छे आरो बरगद के, त पीपल होता ही पेड़ के आंसर।
1: हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब हम एगो आखिरी सवाल पूछे छे, ठीक छो ने? हमरो फल एकदम काला काला होई छे, बच्चा सब गाछी पर चढ़ी कर एकदम चाव से खाए छे, आरु हम तो गर्मी के मौसम में ही आवे छे, तो बताबो हम कौन सा फल छे?
1: दीदी मुझे लग रहा है ये जामुन का पेड़ है, क्योंकि मैं भी जामुन तोड़ के खाता हूँ, और जामुन तो काला ही होता है ना।
0: बिल्कुल सही जवाब। वाह श्रोता सब, अपनो सब तो पेड़ पौधा के अच्छा से पहचाने छो, अपनो श्रोता सब तो बहुते होशियार छे। आशा करे छे कि श्रोता सबका ये गेम पसंद आयलो होते।
1: जी हाँ दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, जितना हम पेड़ों को जानेंगे उतना ही उनसे प्रेम करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं इस सुंदर सी कहानी को अपनी प्यारी दादी अम्मा से। तो आइए सुनते हैं दादी अम्मा की कहानियाँ।
2: हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी दादी अम्मा, नई कहानियाँ और नए किस्सों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपकी दादी अम्मा, और हमारे साथ है हमारे प्यारे बाल श्रोता अंजलि।
3: दादी दादी, अभी तो बारिश का मौसम है, आपको ये बरसात वाली कहानी सुनाओ ना।
2: हाँ, मेरे पास बरसात वाली एक अनोखी सी कहानी है।
3: कौन सी कहानी दादी?
2: कहानी है रिमझिम और जादुई छाता।
3: इस कहानी में क्या होने वाला है?
2: तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहानी में क्या होने वाला है, पहले सुनो तो।
3: तो दादी सुनाओ कहानी।
4: एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रिमझिम नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। रिमझिम को बरसात का मौसम बहुत

0: पसंद था। जैसे ही आसमान में काले बादल आते वह खुश हो जाती। उसे बारिश की बूंदों का जमीन पर गिरना अच्छा लगता था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ पौधे का नहाया हुआ सा दिखना। रिमझिम बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी दादी माँ से पूछा,
1: दादी माँ बारिश कब आएगी?
2: मुझे ठंडी ठंडी गुब्बारों में भीगना है और कागज की नाव बनानी।
0: दादी माँ मुस्कुराई और बोली, धैर्य रखो मेरी बच्ची, बारिश जरूर आएगी। प्रकृति अपने समय पर ही काम करती है। अगले ही दिन सुबह से ही आसमान में घने बादल छा गए। रिमझिम खुशी से उछल पड़ी।
2: थोड़ी ही देर में हल्की फुल्की बारिश होने लगी और फिर देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। रिमझिम अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने धूल भरे छाते पर पड़ी। वह छाता दादी का था, जो उन्होंने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। रिमझिम ने सोचा, क्यों ना मैं इस छाते को साफ करके बाहर बारिश में ले जाऊं? उसने छाता उठाया और उसे पोछने लगी। जैसे ही उसने छाते को पूरी तरह से साफ किया, छाते से एक हल्की सी चमक निकली। रिमझिम हैरान हो गई, यह कोई मामूली छाता नहीं था। जब रिमझिम ने छाता खोला तो उसमें एक प्यारी सी रंग बिरंगी तितली निकलकर हवा में उड़ने लगी। तितली बोली, नमस्ते रिमझिम, मैं इस जादुई छाते की रक्षक हूँ। यह छाता केवल अच्छे और सच्चे बच्चों को ही मिलता है। आज से यह तुम्हारा है। रिमझिम की खुशी का ठिकाना न रहा। तितली ने आगे बताया, यह छाता तुम्हें बारिश के दौरान कुछ खास चीज दिखाएगा और प्रकृति से जुड़ने में मदद करेगा। रिमझिम ने झटपट वह जादुई छाता उठा लिया और बाहर बारिश में निकल पड़ी। जैसे ही वह बारिश में खड़ी हुई, छाते के ऊपर एक इंद्रधनुषी रोशनी निकली और उसने देखा कि बारिश की हर बूंद एक छोटी सी मोती जैसी चमक रही थी। पेड़ों की पत्तियां और भी हरी और ताजी दिख रही थी। उसने देखा कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बारिश से बचने के लिए पत्तियों के नीचे कैसे छिप रहे हैं। छाते के जादू से रिमझिम को बारिश की आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। टिप टिप छप छप और सर सर, उसे लगा कि जैसे बारिश की हर बूंदे उससे कुछ कह रही हो। उसने देखा कि मिट्टी कैसे पानी को सोख रही है और छोटे छोटे पौधे कैसे और बड़े हो रहे थे। रिमझिम ने अपनी कागज की नाव बनाई और उसे पानी के छोटे से तालाब में छोड़ दिया। जादुई छाते की रोशनी में उसकी नाव और भी तेजी से बहने लगी। वो खुशी से हंस रही थी। उस दिन के बाद रिमझिम हर बारिश में उस जादुई छाते को लेकर बाहर निकलती थी। वह जानती थी कि बारिश सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है जो जीवन को नया रंग देता है। जादुई छाते ने उसे सिखाया कि अगर हम अपनी आँखों को खोल कर देखें तो प्रकृति के हर हिस्से में कुछ न कुछ जादू छिपा होता है। और हाँ, रिमझिम हमेशा याद रखती थी कि बारिश में खेलने के बाद कपड़े बदलना और अपने आप को गीलेपन से बचाना भी बहुत जरूरी है। तो बाल श्रोताओं, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप भी इस बारिश में खूब मजे कीजिए और अपने आप को गीलेपन से भी बचाइए और रिमझिम के तरह ही बारिश के मौसम में आनंद लीजिए।
3: वाह दादी, आपने तो जादू वाली कहानी सुनाई। कहानी तो बहुत सुंदर था। आप मुझे भी वो छाता ला दीजिए ना।
0: अंजलि, वो छाता अच्छे और सच्चे बच्चे को मिलती है। तुम भी अच्छे और सच्चे बच्चे बन जाओ, मैं तुम्हें वो छाता ला दूंगी।
3: दादी, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ही।
0: वो छाता तुम्हें कभी न कभी जरूर मिलेगी। वो छाता तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आ जाएगी। तो दोस्तों, अब आपकी दादी अम्मा मिलेगी नई कहानियों के साथ नए एपिसोड में।
4: वाह दादी माई, के कहानी तो बहुत सुंदर छे। जादुई छाता भी छे कहानी में और बारिश के मौसम छे। आशा करे छे कि बाल श्रोता सबके ई कहानी पसंद एलो होते आरो मजा त एले होते कहानी सुनी का कहना कि कहानी बरसात से जे जुड़लो छले आरो बरसात के मौसम भी छे मजा आ गेले कहानी सुनी का दादी माई के बहुते बहुते धन्यवाद छे जेना अपने के इतना सुंदर सुंदर कहानी का सुनत गए।
5: तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने प्यारे और नटखट शैतान दिमाग वाले नंदू भैया और उनके प्यारे बंधु को। तो आइए अब सुनते हैं नंदू की नादानिया में नंदू भैया को।
6: हम चेके नंदू बने जावे सबेरो बंधु टुक टुक टुक।
7: हम चेके नंदू के दोस्त बंधु नंदू भैया। ओ नंदू भैया कहाँ है?
6: क्या लाव रे? यानी हम घरे में छिया या?
7: नंदू भैया की करी रहलो जो फोन हम हो?
6: अरे तोरा पता नहीं छो? अरे वन महोत्सव चली रहल छे नी एकरे ला स्टेटस लगा रहलो छिए एगो पौधा लगावो आरो पर्यावरण का बचावो।
7: वाह नंदू भैया की बढ़िया सोच था तोरो हमू भी आबो स्टेटस लगाबे एगो पौधा लगावो आरो पर्यावरण का बचावो। चलो चलो फटाफट हमू स्टेटस लगा ले छी।
5: अगले दिन
7: एहो नंदू भैया की होना तोरा हो एत परेशान लगी रहलो छो?
6: अरे हम्मा की बतइयो तोरा हम्मा रात में कल इतना भयंकर सपना देखलियो रे की बतइयो अभी भी हमरो मन डरी रहल छो रे।
7: आई नो की अलग ना सपना में जे तो पूरा डरी गलो छो।
6: हमरो सपना में पेड़ एलो छले।
7: पेड़ से कोई भी डरे वाला चीज छे?
6: यही समझी ले बंधु डरैये वाला छले पेड़।
7: अच्छा आई नो नफला नंदू भैया।
6: हाँ रे जाने छे पेर हमरा ने डराय लेलो छले। मैं जाने छ की कलका
8: मैं पेड़ हूँ तुम मानव लोग मुझे सिर्फ स्टेटस पे लगाते हो। क्या तुम्हें स्टेटस ही ऑक्सीजन देगा? क्या तुम्हें स्टेटस ही भोजन देगा? क्या तुम्हें स्टेटस ही शुद्ध हवा देगा? नहीं ना तो तुम लोग वास्तव में ही पेड़ क्यों नहीं लगाते हो? तुम्हें पता है ना पर्यावरण नहीं रहेगा तो तुम लोग भी नहीं रहोगे।
6: ठीक है पेड़ दोस्तों हम कल्ले सा पेड़ लगे बोन हमरा ना मानो नी हमरा ना नी। हाँ लेकिन हमरा ये बता दा हम आमोर लगे वो कि लीची रो लगे वो।
8: तुम आम का पेड़ लगाओ या लीची का पेड़ लगाओ खाते तो तुम ही लोग हो ना।
6: ठीक छन पेड़ बाबा हम कल्ले सा पेड़ लगे बोन आरु सभे का दीदी भैया का बलवन पेड़ लगा ला। ठीक आरु ओकरो ख्याल रखेला आरु टाइम टाइम पर पानी देला।
8: ठीक है मैं चलता हूँ तुम मानव लोग मेरी बातों को भूल मत जाना।
7: अरे टीरिका आई नो लखन सपना महा हम्मा तो आई नो सपना जिंदगी में कहीं ना देखलो चलिए।
6: अरे तो ये बोले छा तोरो सपना में थियो ने हमरो की होले हम भी जाने छी यारा।
7: तब तो हमू स्टेटस ना सच्ची में पेड़ लगे मा।
6: हाँ श्रोता सब तहू सब स्टेटस न तहू सब सच्ची में पेड़ लगाइयो आरो ओकरो रक्षा करियो। अब मिलवे हम सब अगला एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय।
4: नंदू भैया के ई वाला कारनामा तब बहुते कुछ सीख दे छले आरो बहुते मजेदार छले। नंदू भैया ने मजाक मस्ती में श्रोता सबके बहुत अच्छा जानकारी दिलके। आशा करे छे कि श्रोता सबका पसंद एलो होते आरो नंदू बंधु के ई शैतान दिमाग खुरापाती दिमाग से ओकरो मनोरंजन होलो होते।
5: तो आइए अब कार्यक्रम में इस आखिरी गीत को सुनते हैं। ये गीत संगीत विधा के साथियों ने भेजा है तो आइए इस गीत को सुनते हैं।

0: अपनो सभ्य संगीत विधा के साथी सबके बहुते बहुते धन्यवाद। बहुते सुंदर प्रस्तुति छले। आशा करे छे कि श्रोता सबका खूबे पसंद ऐलो होते आरो ई गीत त एकदम मन खुश करी देलकै। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। तो चलो अब कार्यक्रम में आखिरी स्तंभ में तो अभी गेलो छे। अब कार्यक्रम से विदा ले के समय हो गेलो छे। तो चलो अब आज के खास सुविचार का पढ़े छे और अपनो दिनचर्या में एगो लक्ष्य का निर्धारित करे छे। तो आज के खूबसूरत आरो अनमोल शानदार सुविचार हाजिर छे।
1: आज का सुविचार हाजिर हो।
0: हर सुबह एक नई शुरुआत है। अपने सपनों को सींचने का एक नया अवसर है।
1: इस सुविचार का मतलब है कि हर सुबह हमें मौका मिलता है अपने सपने को पूरा करने का और अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कहले ऋषि। आज के सुविचार तो बहुते बढ़िया छले, खूब सुंदर आरो इस सुविचार से बहुते अच्छा सीख भी मिलले। आशा करे छिए कि बाल श्रोता सबका पसंद एलो होते।
1: जी हाँ साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम की स्तंभ का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा।
0: जी हाँ साथी सब, एकरे साथ अब कार्यक्रम यहीं समाप्त हो छे। आशा करे छिए कि श्रोता सबका आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होते आरो कार्यक्रम का खूब आनंद के साथ एकदम सुनलो होबो। तो अपनों के ई कार्यक्रम कैसनो लगले हमरा जरूरे बतइयो। आशा करे छिए कि आज के कार्यक्रम में मजा तक खूब अलो होते। तो अपनो प्यारा प्यारा मैसेज का भेजो आरो कार्यक्रम में अपनो प्यारा सा फीडबैक का जरूरे शामिल करवाबो।
1: तो साथियों, आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो आप अपना मैसेज याद से भेजें। तो साथियों, अब हम मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे से इसी जोश और उमंग के साथ। आपकी चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
0: तो बाल श्रोता सब, अब हम सब मिलबे नयका जानकारी नयका किस्सा आरो ढेर सारा मौज मस्ती के साथ। तब तक अपनो ख्याल रखियो आरो अब अपनो रेडियो दीदी कंचन
1: और अपने प्यारे रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे बाल किलकारी के साथ आपके लिए नए एपिसोड में। तब तक के लिए

बच्चों अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे अनुमति। जय हिंद बच्चों।

बाल मंजूषा कार्यक्रम आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं रणवीर सिंह। इनका गाया सुनते हैं ये लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: अब सुनिए ये लोकगीत, कलाकार हैं रणवीर सिंह।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आप सुन रहे हैं लोकगीत, कलाकार हैं रणवीर सिंह।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: रणवीर सिंह की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लोक गीत आप सुन रहे हैं, कलाकार हैं रणवीर सिंह। अब सुनिए इनका गाया ये लोक गीत।

0: Kinadyaan na kayo, yan ang makalapay.
1: रणवीर सिंह की आवाज में सुनिए ये लोक गीत।

कर ले तो नौकरिया हो बाबा, कर ले तो नौकरिया, झाड़ू पोछा कर ले हो बाबा, मंजला लोटा थरी, मंजला लोटा थरिया हो बाबा, मंजला लोटा थरिया, सब पर फिर ला नजर हो बाबा।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अरिजीत सिंह के स्वर में, गीत रचना सिद्धार्थ गरिमा की है, संगीतकार हैं श्रेयस पुनरेक और फिल्म है एनिमल।

कार्यक्रम का अगला गीत मिथ ब्रॉस जोनिता गांधी एवं जुबिन नौटियाल की मिले जुली आवाजों में। गीतकार हैं कुमार, संगीतकार मिथ ब्रॉस और फिल्म है ड्रीम गर्ल 2।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुमराह से। गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल एवं अमन त्रिखा। गीतकार एवं संगीतकार हैं मिथुन।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राज बर्मन के स्वर में। फिल्म है मिशन मजनू, गीतकार रोहित शर्मा और संगीतकार हैं राघव सहचर। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निधि मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की मिली जुली आवाज़ों में फिल्म गदर 2 का ये गीत। गीतकार हैं शहीद कादरी और संगीतकार मिथुन।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

आप सबों का आज के गुलदस्ता अंक में करते हैं हम बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है एक ऐसे विषय से जो शायद हर इंसान के ज़िंदगी से जुड़ा है। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे इंतज़ार के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा सफ़र है, ये एक ऐसी भावना है जो जुड़ा है हर व्यक्ति के जीवन से, हर व्यक्ति की भावनाओं से। इंतज़ार यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का संसार है। कभी किसी ने किसी के लौटने का इंतज़ार किया तो कभी किसी ने खुशखबरी का इंतज़ार किया। कभी बारिश की पहली बूंदों का इंतज़ार होता है तो कभी उस सुबह का इंतज़ार जो जीवन में कई रोशनी लेकर आती है। कहते हैं दोस्तों कि अगर ज़िंदगी में इंतज़ार ना हो तो मिलने की खुशी भी अधूरी रह जाती है। सोचिए, बचपन में गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार अगर ना होता तो वो स्कूल के दिन हमें बहुत ही उबाऊ से लगते, बहुत ही बोरिंग लगते। छुट्टियों का इंतज़ार हमें बहुत ही बेसब्री से होता है, और ख़ास करके उन बचपन के दिनों में जब छुट्टियों का हमारे लिए विशेष महत्व होता है। जब छुट्टियां लेकर आती है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मौज और मस्ती, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो क्या दिन थे बचपन के जब हम इंतज़ार करते थे अपनी छुट्टियों का। और गर्मी की छुट्टी तो लंबी छुट्टी होती थी मित्रों, लेकिन अभी भी हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों या हों वयस्क, इंतज़ार करते हैं हम छुट्टियों का। और क्योंकि छुट्टियों के दिन हम अपने अपनी ज़िंदगी को जीते हैं अपने हिसाब से, तो इंतज़ार होता है बेहद ख़ास हर इंसान के लिए। ज़िंदगी में अगर हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को साकार करने की कोशिश करनी है तो हमें छुट्टियों का इंतज़ार तो होता ही है, और त्यौहार का इंतज़ार भी हम करते हैं बहुत ही बेसब्री से। हम एक और विशेष दिन है दोस्तों जो हर किसी के जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करता है, वो है

उसका जन्मदिन यानी कि बर्थडे, और उस दिन का लोग करते हैं बेसब्री से इंतज़ार। और जिनके जिनका जन्मदिन होता है वो तो अपने आप में अपने आप को खास समझते ही हैं, पर उनके माता पिता, उनके जो परिजन होते हैं, वो भी उस दिन को खास बनाने के लिए कई सारी तैयारियां करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब आए वो खास दिन। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इंतज़ार हर व्यक्ति के जीवन का अहम पहलू है, एक अहम तारीख होती है। जैसे कि हम अगर देखें तो करते हैं हम ये इंतज़ार हर वीक में संडे का, और जब रविवार की बात आती है दोस्तों तो कई सारे छुट्टियों छुट्टी जो हमारी होती है तो उसमें कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं, और कई सारी मौज मस्ती भी हम करते हैं। तो हम इंतज़ार की जब बातें होती है तो जब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम इंतज़ार हमारे इंतज़ार के मायने बदल से जाते हैं, हमारे इंतज़ार का जो महत्व होता है वो अलग तरीके से हम मनाते हैं, अलग तरीके से उसके बारे में सोचने लगते हैं। कभी नौकरी मिलने का इंतज़ार होता है हमें, तो कभी हमें सफलता के बारे में हम सोचते हैं, और ये हमारी कोशिश होती है कि हम किस तरह से अपने जीवन में सफल हों और अपनी जो ज़िंदगी है उसे पटरी पर लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हमें किसी के बारे में अगर जब और जब हमें सफलता मिल जाती है तो एक अलग सा मुस्कान हमारे चेहरे पर होता है, और हमें लगता है कि हमने जो इंतज़ार किया वो एक सफल मुकाम तक पहुंचा। लेकिन कभी कभी इंतज़ार हमें धैर्य सिखाता है या बताता है कि हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए समय देना पड़ता है हमें, और जो अपने समय को सही तरीके से सही काम में लगाते हैं और अपने धैर्य को बनाए रखते हैं तो हमें सफलता तो अवश्य मिलेगी। जो लोग इंतज़ार करना सीख जाते हैं मित्रों, वे जीवन को कठिनाइयों से निकालने की कला जान जाते हैं, जीवन में कठिनाइयों को बेहतर ढंग से निभाने की जो ये पर उनके उनका जो ढंग होता है, उनके समझने की जो तरीके होते हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य आ जाता है क्योंकि उन्होंने इंतज़ार करना सीख लिया है। तो प्रकृति भी हमें इंतज़ार के कई सारे संदेश देती है। तो बातें अभी इस विषय पर हम बहुत सारी करेंगे, पहले सुनते हैं ये गीत।

कई बार इंतज़ार लंबा होता है और मन बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो, मगर याद रखिए मित्रों, हर रात के बाद सुबह होती है, हर कठिन दौर के बाद कुछ आसान मोड़ भी आते हैं। यही जीवन का नियम है, यही जीवन जीने का नाम है, यही जीवन में लगातार निरंतर चलने का नाम है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, अगर हम अंधेरे के बारे में जानेंगे नहीं तो हमें उजाले का महत्व भी पता नहीं चलेगा। उजाले का महत्व तभी है मित्रों जब हमने अंधेरे का सामना किया हो। इंतज़ार केवल खाली बैठने का नाम नहीं, यह उस समय का नाम है जब हम अपने जीवन के सपने को सजोते हैं और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं जो हमने सपने देखे हैं, अपनी जीवन को साकार, अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए हम मेहनत तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम करते हैं इंतज़ार अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। तो हम ये कह सकते हैं मित्रों कि अगर हमने धैर्य के साथ इंतज़ार किया हो और अपने लक्ष्य तक पाने की लगातार कोशिश करी हो तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे ज़रूर। तो इंतज़ार हमने पहले भी कहा कि कई सारे इंतज़ार के मायने हैं, कई सारे इंतज़ार के पड़ाव हैं जहाँ हम अपने आप को देखते हैं कि हम किस तरह से अपने इंतज़ार को अपने मुकाम तक पहुंचा पाए। अगर बात रिश्तों की हो रही हो मित्रों तो रिश्तों में भी इंतज़ार का अपना महत्व है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रिश्तों में इंतज़ार का अपना महत्व है। जब कोई अपना दूर होता है तो उसकी एक आवाज़ के लिए उसे एक मिलन के लिए हमारा मन तरसता है और हम यही इंतज़ार हमें और भी करीब ले आता है। शायद इसलिए कहा गया है कि दूरी रिश्तों की परीक्षा लेती है। प्रकृति भी हमें इंतज़ार का संदेश देती है। किसान जब फसल बोते हैं तो फसल पकने का इंतज़ार करते हैं। माली अपने पौधे को रोज सींचता है और फूल खिलने का इंतज़ार करता है। तो हम हर जगह देखते हैं कि इंतज़ार के अपने मायने हैं, इंतज़ार का अपना महत्व है। और जब बात प्यार इश्क की जाए तो उसमें भी इंतज़ार के अपने मायने हैं।

तो आप भी थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए और कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति। आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले कार्यक्रम का और इस गुलदस्ता कार्यक्रम के अंक से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है विज्ञानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं प्रत्यक्ष कुमार और आप सुन रहे हैं विज्ञानवाणी, एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां विज्ञान की दुनिया से जुड़ी रोचक जानकारियां, नई खोज और अद्भुत तथ्य आप तक पहुंचाए जाते हैं। विज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे विज्ञान के अनसुने पहलुओं को, समझेंगे नई तकनीकों को और खोजेंगे प्रकृति के उन रहस्यों को जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा विज्ञान की रोशनी में। आज के इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया से जुड़ी कुछ ताज़ा और रोचक खबरें, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान समाचार। सबसे पहली खबर अंतरिक्ष की दुनिया से। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का हायाबुसा 2 मिशन एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। यह यान बहुत जल्द ही एक क्षुद्र ग्रह के बेहद करीब से गुजरने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मिशन में हमें सौरमंडल की उत्पत्ति और अंतरिक्ष में मौजूद रहस्यमयी पिंडों के बारे में नई जानकारियां मिल सकती है। यह मिशन भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान को और मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने इसे ओमेगा ब्लॉक नामक मौसमीय घटना से जोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी घटनाएं अब पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगली खबर खगोल विज्ञान से जुड़ी है। वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा है, जिसका नाम TOI 1710B रखा है। यह ग्रह अपने तारों की दिशा से उलट घूम रहा है। यह खोज बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इससे ग्रहों की उत्पत्ति और उनके व्यवहार को लेकर वैज्ञानिकों को सोच बदल सकती है। अब चलते हैं नासा की ओर। नासा ने अपने पुराने लेकिन महत्वपूर्ण स्विफ्ट टेलीस्कोप को बचाने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया है। यह दूरबीन वर्षों से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य इसे सुरक्षित रखना और आने वाली समस्याओं में भी इसका उपयोग जारी रखना। एक रोमांचक खबर यह

भी है। वैज्ञानिकों ने 3i एटलस नामक एक अंतरिक्ष धूमकेतु की खोज की है जो लगभग 12 अरब साल पुराना बताया जा रहा है। यह खोज ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास को समझने में काफी मददगार साबित हो सकती है। और अंत में भारत के लिए गर्व की खबर है कि छत्तीसगढ़ की 14 वर्षीय छात्रा महिमा राजपूत का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन के लिए हुआ है। इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह दिखाता है कि भारत की युवा विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रोताओं, ये थी विज्ञान जगत की कुछ खास और ताज़ा खबरें। विज्ञान के हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है और दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने खास सेगमेंट विज्ञान रत्न में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे महान भौतिकी वैज्ञानिक हांस बेथे की, जिनका नाम आधुनिक भौतिकी और परमाणु विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। श्रोताओं, हांस बेथे का जन्म 2 जुलाई 1906 को जर्मनी के स्टारबर्ग शहर में हुआ था, जो उस समय जर्मनी साम्राज्य का हिस्सा था। बचपन से ही उनका मन पढ़ाई और विशेष रूप से गणित तथा विज्ञान की ओर आकर्षित था। उनके पिता शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे, उनकी माता एक लेखिका थीं, इसलिए घर का माहौल शिक्षा और ज्ञान से भरा हुआ था। इसी वातावरण ने उनके भीतर जिज्ञासा और खोज की भावना को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर उन्हें विज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। हांस बेथे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में पूरी की और बाद में म्यूनिक विश्वविद्यालय से भौतिकी की पढ़ाई की। वहां उन्होंने महान वैज्ञानिक एंड्रॉल्ड के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। उस समय क्वांटम मैकेनिक्स का विकास तेजी से हो रहा था और हांस बेथे ने इस क्षेत्र में गहराई दिखाई। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने शोध पत्रों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय में अपनी पहचान बना ली। लेकिन वर्ष 1933 में जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की सरकार आई, नाजी शासन शुरू हुआ, तब यहूदियों और परिवारों पर अत्याचार बढ़ने लगे। क्योंकि हांस बेथे की माता यहूदी मूल की थीं, इसलिए उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा। यह उनके जीवन का एक कठिन मोड़ था, लेकिन इस मोड़ ने उन्हें अमेरिका तक पहुंचाया, जहां उनकी प्रतिभा को सही दिशा मिली। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया। यहीं उन्होंने अपनी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शोध किए। वर्ष 1938 में उन्होंने वह सिद्धांत प्रस्तुत किया जिससे यह समझाया कि सूर्य और अन्य तारे अपनी ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं। उन्होंने बताया कि तारों के केंद्र में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस खोज खगोल भौतिकी के लिए एक क्रांतिकारी कदम थी, क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आया कि तारों की चमक और गर्मी का असली स्रोत क्या है।

इसी प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस खोज खगोल भौतिकी के लिए एक क्रांतिकारी कदम थी, क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आया कि तारों की चमक और गर्मी का असली स्रोत क्या है।

0: उनका मानना था कि वैज्ञानिक का उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का होना चाहिए। अपने लंबे जीवन में हांस बेथे ने सैकड़ों शोध पत्र लिखे और अनगिनत छात्रों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं और खोजें आज भी वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शन हैं। उन्होंने 98 वर्ष की आयु में विज्ञान की सेवा की। उन्होंने 98 वर्ष की आयु तक विज्ञान की सेवा की और 6 मार्च 2005 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार और उनकी खोज आज भी जीवित हैं। हांस बेथे की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, यदि हमारे भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा है तो हम दुनिया बदल सकते हैं। उनका जीवन विज्ञान, समर्पण और मानवता का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, यदि महान वैज्ञानिक हांस बेथे की प्रेरणादायक कहानी। श्रोताओं, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि। श्रोताओं, आजकल कृषि में हम नए नए टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी से एक नाम उभर कर आता है जिसे हम नैनो तकनीक कहते हैं। आज हम आपको एक वार्ता सुनाने जा रहे हैं जिसमें वार्ताकार डॉक्टर रागनी कुमारी कृषि के नैनो तकनीक के अनुप्रयोगों के बारे में आपको बताया है, तो आइए सुनते हैं।
1: किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर रागनी कुमारी, संबद्ध प्राध्यापक व वरीय वैज्ञानिक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी तकनीक के बारे में जो हमारी खेती की लागत को लगभग आधा और हमारे मुनाफे को दुगना करने की पूरी क्षमता रखती है। आज का हमारा विषय है कृषि में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग। साथियों, आज खेती केवल परंपरागत अनुभव पर आधारित कार्य नहीं रह गई है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान, नई तकनीकों और शोध का संगम बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल सीमित होता जा रहा है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, बढ़ता तापमान, मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति तथा खेती की बढ़ती लागत किसानों के सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे समय में आवश्यकता ऐसी तकनीक की है जो कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन दे, पर्यावरण को सुरक्षित रखे तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। नैनो तकनीक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। कुछ वर्षों में आपने नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी का नाम अवश्य सुना होगा। बहुत से किसान इनका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन नैनो तकनीक केवल नैनो उर्वरकों तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग पौध पोषण, कीट एवं रोग प्रबंधन, सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, जल शुद्धिकरण तथा सटीक कृषि जैसे अनेक आधुनिक प्रणालियों में तेजी से बढ़ रहा है। तकनीक को भविष्य की कृषि का आधार मान रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर नैनो तकनीक है क्या। सरल भाषा में यदि समझे तो नैनो तकनीक अत्यंत सूक्ष्म कणों का विज्ञान है। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 1/4 भाग होता है, अर्थात यदि किसी पदार्थ को अत्यंत छोटे आकार में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके गुणों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है। उसका सतही क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि कम मात्रा में उपयोग करने पर भी उसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अब जरा अपनी वर्तमान खेती की स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम खेत में यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरक डालते हैं तो क्या उसका पूरा लाभ पौधों को मिल पाता है? इसका उत्तर है नहीं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि पारंपरिक उर्वरकों का लगभग 60-70% भाग पौधों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। कुछ भाग मिट्टी में स्थिर हो जाता है, कुछ वर्षा या सिंचाई के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाता है तथा कुछ भाग गैस के रूप में वातावरण में उड़ जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरक का बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ती है, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और जल तथा वायु प्रदूषित होते हैं। लगातार वैज्ञानिक रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम होने लगती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे घटती जाती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने नैनो तकनीक विकसित की। इसका उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, खेतों को टिकाऊ बनाना भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो नैनो तकनीक किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण तीनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। पारंपरिक यूरिया के बड़े दानों की तुलना में नैनो यूरिया के कण अति सूक्ष्म होते हैं। जब इनका छिड़काव

पौधों की पत्तियों पर किया जाता है तो ये पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, के माध्यम से सीधे पौधों के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप पौधे इन पोषक तत्वों को अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि जहां पारंपरिक यूरिया की उपयोग दक्षता लगभग 30 से 40% रहती है, वहीं नैनो यूरिया की उपयोग दक्षता 80% या उससे भी अधिक हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि कम मात्रा में अधिक पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे उर्वरकों की बर्बादी कम होती है, परिवहन एवं भंडारण की लागत घटती है तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है, तब नैनो उर्वरकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इनके उपयोग से नाइट्रोजन की हानि कम होती है तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी घटता है। इससे कृषि अधिक पर्यावरण अनुकूल बनती है। हम सभी जानते हैं कि फसलों में कीट और रोग का लगना एक सामान्य समस्या है। इनके नियंत्रण के लिए किसान पारंपरिक कीटनाशकों, फफूंदनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका एक बड़ा भाग पौधों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। तेज धूप, वर्षा, हवा अथवा सिंचाई के कारण दवा का प्रभाव जल्दी समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप किसानों को बार बार दवा का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नैनो तकनीक ने इस समस्या का भी प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया है। आज ऐसे नैनो कीटनाशक विकसित किए जा रहे हैं जिनमें सक्रिय रासायनिक तत्व सूक्ष्म नैनो कैप्सूल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। ये दवाएं पौधों की सतह पर अधिक समय तक टिकती है और धीरे धीरे नियंत्रित मात्रा में निकलती रहती है। इससे दवा का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और बार बार छिड़काव की आवश्यकता कम हो जाती है। इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि दवा केवल लक्ष्य कीट या रोग पर अधिक प्रभाव डालती है। इससे खेत में रहने वाले लाभकारी जीव जैसे मधुमक्खियां, केचुए आदि अन्य उपयोगी कीट अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और केचुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसलिए नैनो तकनीक जैव विविधता के संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हो रही है। साथियों, आधुनिक कृषि अब केवल अनुमान के आधार पर नहीं चलती, बल्कि वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसी कारण आज प्रिसीजन फार्मिंग अर्थात सटीक कृषि का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इनमें नैनो सेंसर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे छोटे सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान, पीएच तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखते हैं। प्राप्त जानकारी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से किसानों तक पहुंच जाती है। इससे किसान को यह जानकारी मिल जाती है कि खेत के किस भाग में पानी की आवश्यकता है, कहां पोषक तत्वों की कमी है और किस स्थान पर फसल स्वस्थ रूप से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक ऐसे नैनो सेंसर भी विकसित कर रहे हैं जो पौधों में रोग के बाहरी लक्षण दिखाई देने से पहले ही उनके भीतर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को पहचान सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसान समय रहते रोग की जानकारी प्राप्त कर उसका उपचार कर सकता है। इससे फसल की हानि कम होती है तथा अनावश्यक दवाओं के उपयोग से भी बचा जा सकता है। किसान भाइयों, आज पानी की कमी कृषि की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनती जा रही है। ऐसे में प्रत्येक बूंद का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है। नैनो तकनीक इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। नैनो हाइड्रोजेल ऐसे विशेष पदार्थ हैं जो अपने वजन से कई गुना अधिक पानी सोख सकते हैं। जब इन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है तो वर्षा या सिंचाई का अतिरिक्त पानी ये अपने भीतर सुरक्षित कर लेते हैं। बाद में जब मिट्टी सूखने लगती है तो यही पानी धीरे धीरे पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते रहते हैं। इससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है और पौधों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। ये विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों, रेतीली मिट्टी तथा जल संकट वाले इलाकों में यह तकनीक किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इससे पानी की बचत होती है, फसल सूखे की स्थिति में भी अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती है तथा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। अब बात करते हैं नैनो कैरियर अथवा स्मार्ट डिलीवरी प्रणाली की। सामान्यतः जब हम खाद या दवा का प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ भाग पौधे तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन नैनो कैरियर पोषक तत्वों अथवा दवाओं को अपने साथ लेकर सीधे पौधे के उस भाग तक पहुंचाते हैं जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके कारण कम मात्रा में भी अधिक प्रभाव प्राप्त होता है तथा पोषक तत्वों की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक कार्बन नैनो ट्यूब, जियोलाइट तथा अन्य नैनो सामग्रियों का उपयोग करके ऐसी उन्नत प्रणालियां विकसित कर रहे हैं जो पौधों को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे पोषण उपलब्ध कराते हैं।

0: आती हैं। भविष्य में यह तकनीक उर्वरकों के उपयोग की पूरी प्रणाली को बदल सकती है। आज कृषि उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि खेत से उपभोक्ता तक पहुँचने तक फल, सब्जियाँ और अन्य कृषि उत्पाद सुरक्षित तथा ताज़ा बने रहें। हमारे देश में कटाई के बाद भंडारण और परिवहन के दौरान बड़ी मात्रा में फल एवं सब्जियां खराब हो जाती हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और खाद्य अपव्यय भी बढ़ जाता है। नैनो तकनीक इस समस्या के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज ऐसी स्मार्ट पैकेजिंग सामग्री विकसित की जा रही है जिसमें नैनो क्ले तथा अन्य नैनो पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पैकेजिंग सामग्री सामान्य प्लास्टिक की तुलना में अधिक मजबूत होती है तथा हवा, नमी और सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को काफ़ी हद तक रोकती है। परिणाम स्वरूप फल एवं सब्जियां अधिक समय तक ताजी बनी रहती है, उनका पोषण मूल्य सुरक्षित रहता है तथा परिवहन के दौरान होने वाली क्षति भी कम हो जाती है। कुछ आधुनिक पैकेजिंग प्रणालियों में ऐसे नैनो सेंसर भी लगाए जा रहे हैं जो यह संकेत दे देते हैं कि खाद्य पदार्थ अभी सुरक्षित है या खराब होना शुरू हो गया है। भविष्य में ऐसी तकनीक उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कृषि में स्वच्छ जल का महत्व हम सभी जानते हैं। अनेक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी खारा अथवा दूषित होता है जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। वैज्ञानिक चुंबकीय नैनो कणों द्वारा तथा अन्य नैनो पदार्थों का उपयोग करके ऐसे फिल्टर विकसित कर रहे हैं जो पानी से हानिकारक धातुओं, विषैले रसायनों तथा रोगजनक सूक्ष्म जीवों को हटाने में सक्षम है। इससे सिंचाई के लिए बेहतर गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराया जा सकता है। नैनो तकनीक का लाभ सिर्फ खड़ी फसल पर ही नहीं, बुआई के समय बीज पर भी मिलता है। आजकल वैज्ञानिकों ने नैनो प्राइमिंग तकनीक विकसित की है। इसमें बुआई से पहले बीजों को नैनो जिंक या नैनो आयरन के हल्के घोल में कुछ देर के लिए डुबोकर उपचारित किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि बीजों का अंकुरण बहुत तेजी से और लगभग 95 से 100% तक होता है। इससे शुरुआती अवस्था में ही पौधे की जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं, जिससे सूखा या तेज गर्मी पड़ने पर भी छोटे पौधे मरते नहीं हैं। साथियों, जितनी आधुनिक यह तकनीक है उतना ही आवश्यक है इसका वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग। भारत आज टिकाऊ कृषि अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान तथा विभिन्न वैज्ञानिक संगठन लगातार ऐसी तकनीकों के विकास में लगे हुए हैं जो कम लागत में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करे। नैनो तकनीक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समझना भी आवश्यक कि नैनो तकनीक पारंपरिक कृषि का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक तथा टिकाऊ बनाने का माध्यम है। अंत में मैं किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगी कि विज्ञान और अनुभव का समन्वय ही भविष्य की समृद्ध कृषि का आधार है। आइए आधुनिक तकनीकों को वैज्ञानिक सलाह के साथ अपनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाएं। याद रखिए, सही तकनीक, सही उपयोग, समृद्ध किसान, सुरक्षित भविष्य। नैनो तकनीक अपनाएं, लागत घटाएं, उत्पादन बढ़ाएं और पर्यावरण बचाएं। इन्हीं संदेशों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, हम डॉक्टर रागनी कुमारी को देंगे बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले अंक विज्ञान समसामयिकी में आपका स्वागत है। हर साल 3 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक बैग के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसके विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी यही सुविधा अब हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। प्लास्टिक बैग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बहुत धीरे धीरे नष्ट होता है। एक सामान्य प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इस दौरान यह मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, अब समुद्रों, नदियों और यहाँ तक कि हमारे भोजन और पीने के पानी में भी पाए जा रहे हैं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंताजनक है। प्लास्टिक बैग केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि जीव जंतु के लिए भी बड़ा खतरा है। हर साल लाखों समुद्री जीव पक्षी और जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार प्लास्टिक उनके शरीर में फंस जाता है और वे धीरे धीरे मर जाते हैं। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की शुरुआत लोगों को यह याद दिलाने के लिए की गई थी कि अगर हम आज से अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक प्रदूषित और असुरक्षित पृथ्वी मिलेगी। वैज्ञानिक और पर्यावरण विद लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कपड़े, जूट और कागज के बैग जैसे विकल्पों को अपनाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत सहित दुनिया की कई देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन केवल कानून बनाना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करेगा। जब हम बाजार जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला ले जाएं, प्लास्टिक पैकेजिंग से बचें और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। यह दिन हमें यह सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी का कर्तव्य है। अगर हम छोटे से छोटे कदम उठाएं तो बड़े बदलाव को संभव कर सकते हैं। एक प्लास्टिक बैग कम इस्तेमाल करने पर भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, इस विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर संकल्प लें कि हम प्लास्टिक बैग का उपयोग कम करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान करेंगे, क्योंकि स्वच्छ और सुरक्षित पृथ्वी ही आने वाली कल का सबसे बड़ी पूंजी है। श्रोताओं, भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। संयोग की बात यह है कि उनका जन्म और निधन दोनों 1 जुलाई को हुआ था। जिन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे समाज के स्वास्थ्य रक्षक होते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है या किसी गंभीर परिस्थिति में होता है, तब डॉक्टर ही सबसे पहले उसकी मदद के लिए सामने आते हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल दवा देना नहीं, बल्कि मरीज को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना भी होता है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चिकित्सा विज्ञान ने मानव जीवन को बेहतर और लंबा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई तकनीकों, आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक शोधों के कारण आज कई ऐसी बीमारियों का इलाज संभव है जिन्हें कभी असाध्य माना जाता था। इन सब के पीछे डॉक्टरों की मेहनत और उनकी विशेषता होती है। कोरोना महामारी के समय पूरी दुनिया ने डॉक्टरों की असली भूमिका को करीब से देखा। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, तब डॉक्टर अस्पतालों में दिन रात काम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रहे थे। उस कठिन समय में डॉक्टर हमारे लिए किसी योद्धा से कम नहीं थे। उन्होंने यह सब साबित किया कि सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर्स डे केवल उनका सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाने का भी अवसर देता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और डॉक्टरों के परिश्रम का सम्मान करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, समय समय पर स्वस्थ जांच कराना और बीमारी होने पर सही सलाह लेना भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज विज्ञान और चिकित्सा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी, जीन थेरेपी और नई दवाइयां चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। लेकिन इन सभी तकनीकों के बीच डॉक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि इंसान की संवेदना और समझ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो श्रोताओं, इस डॉक्टर्स डे पर आइए हम उन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद दें जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखते हैं। इनका योगदान केवल एक पैसा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। तो श्रोताओं, अब समय हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट माइंड टेस्ट का। तो श्रोताओं, पिछले सप्ते जो आपसे सवाल पूछा गया था, सोशल मीडिया दिवस कब मनाते हैं, तो इसका सही उत्तर है 30 जून को। और हमारा दूसरा सवाल था, लॉर्ड केल्विन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर होगा तापमान पैमाने के लिए। हमें जवाब लिख भेजा है गुड्डा से सुमन, भागलपुर से सुरभि और नगछिया से सोनम ने। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज के प्रश्न भी आप नोट कर लें और उत्तर हमें आप लिख कर भेज सकते हैं ईमेल पर। हमारा ईमेल पता है phairbhagalpur@gmail.com। या पता नोट करें, कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा, केंद्र निदेशक विज्ञान वाणी अनुभाग, भागलपुर आकाशवाणी। हमारा पिन है 812001। हमारा आज का सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? और हमारा दूसरा सवाल है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस बनाते हैं? उम्मीद है आप हमें उत्तर लिखकर जरूर भेजेंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान वाणी का आज का यह ज्ञानवर्धक सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज की वैज्ञानिक जानकारियों ने आपके ज्ञान को और समृद्ध किया होगा और विज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा को नई दिशा दी होगी। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार और स्वर संकलन था प्रत्यक्ष कुमार का। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई खोज और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: विज्ञानवाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुर संगम कार्यक्रम। आज सुर संगम के कलाकार हैं बलराम मिश्र। इनसे हम आपको सुनवाएंगे इनका तबला वादन इस अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं सुरसंगम कार्यक्रम। कलाकार हैं बलराम दास मिश्र। इनसे हम आपको सुनवा रहे हैं इनका तबला वादन एक ताल में।

कार्यक्रम इसमें आप अभी सुन रहे थे बलराम दास मिश्र का तबला वादन एक ताल में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अब हम और इनसे इनका तबला वादन हम आपको सुनवा रहे हैं रूपक ताल में।

सुर संगम कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे बलराम दास मिश्र का तबला वादन रूपक ताल में। इसके साथ ही संपन्न होता है सुर संगम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।

0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। गायिका हैं शर्मिला गुप्ता। इनसे हम आपको सुनवाते हैं इनका गाया एक और शिव भजन।

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने रांची केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में SIR अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय U19 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने विकसित गाँव बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
1: प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो। सजग रहना है, सचेष्ट रहना है ताकि बिना किसी गड़बड़ और अनियमितता के हम मजदूरों को रोजगार देने का काम और विकसित गाँव बनाने का काम के हमारे संकल्प को हम पूरा कर सकें।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए एक वीडियो तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने की अपील की है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार ऐसे कॉल आ चुकी हैं। इस संबंध में उन्होंने धनबाद के SSP और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है।
2: हमें प्रिंस खान से धमकी आया 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया। ये जिला प्रशासन को मैंने सूचना दे दिया है। जिला प्रशासन का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, राज्य सरकार का काम है। 2-2 बार 3-3 बार हम गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हर क्रिमिनल का घर ढाना चाहिए, उसका पहले करना चाहिए।
0: भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप कल गुजरात के सानंद स्थित CG सेमीकॉन ओसैट प्लांट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जमशेदपुर की बेटी तनीषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया। आकाशवाणी से बात करते हुए तनीषा गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में झारखंड की बेटियों की सराहना की।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी लड़कियां झारखंड से थी, जमशेदपुर से थी, इन सारी लड़कियों की बहुत ज्यादा सराहना की है कि झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य जहां पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वो सारी लड़कियां अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
0: CISF ने प्रशासनिक फेरबदल करते BCCL धनबाद के नए DIG के रूप में राजीव मिश्रा की नियुक्ति की है। वहीं यहां पदस्थापित DIG जितेंद्र कुमार तिवारी का तबादला BSL बोकारो कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा

0: समाचार एक सैंडल @EIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @EIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल EIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के बहुचर्चित 16 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार सिंह को दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मामले में ट्रायल का सामना कर रहे तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सुरेश शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भांग को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कैनबिस की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा पाए सुनील सिंह को बरी कर दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई में कपड़ा दुकानदार पर रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी ललित मीणा ने संवाददाताओं को बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहित बाग को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी।
1: फायरिंग की घटना हुई थी, बाद में जब अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि फायरिंग रंगदारी मांगने के इंटेंशन से, धमकाने के इंटेंशन से की गई थी। 9 जने पहले पकड़े जा चुके हैं, गाड़ी की बरामदगी हो चुकी है, 5 देसी पिस्टल की बरामदगी हो चुकी है, खोखा और जिंदा गोलियां की बरामदगी हो चुकी है और ये व्यक्ति मोहित बाग पकड़ा गया।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कल से 12 जुलाई तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय महिलोंग में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 438 प्रतिभाशाली बाल शतरंज खिलाड़ी अपनी रणनीति, कौशल और बुद्धिमता का प्रदर्शन करेंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह कार्य करते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी करने पर जोर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में SIR अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे

शर्मिला गुप्ता के गाए इस लोक गीत के साथ ही संपन्न होता है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

स्वागत करै छिए सभ्य श्रोता भाई बहन के हुनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। सभ्य का अकलू के नमस्कार। आरु बताबो की हाल चाल। आशा करै छिए कि सब कुछ बढ़िया होते। कहने की देख लो अभी अग्नि की है चकाचक, एकदम धूप छले लागी रोले सीधे कपाड़ों पर, लेकिन थोड़ा देर पहना कहनो बारिश दिल के। हाँ, ई अलग बात छे कि कहीं बारिश होले और कहीं बारिश नहीं होले। की करबो, है तो सब ऊपर वाला के मायाज के। कहीं धूप छे तो कहीं छाँव छे, कहीं बरसात छे तो कहीं गर्मी छे। है तो चलते रहे छे ठीक अपनो जीवन की तरह, कभी दुख तो कभी सुख। अभी दिन छे फेनू रात होते, लेकिन रात के बाद फेनू से दिन होबे करते। तो यही वास्तव आशा बनेलो रखो, कना कि आशा पर ही जीवन टिकलो छे। और जीवन टिकलो छे धरती के हरा भरा यानी कि हरियाली यानी कि जंगल पर, पेड़ पौधा पर। पेड़ पौधा रहते तो जीवन रहते, ठीक ने। तो यही वास्तव हम असनी वन महोत्सव भी मनाए छे हर साल जुलाई के पहला सप्ताह में है मनेलो जाए छे। वन से हमरो आज छे तो हमरो कल छे, हमरो भविष्य छे। सब कुछ वन पर ही छे, सब कुछ वन से ही सुरक्षित छे। हमरो जीवन में जंगल के बहुत महत्व छे। वन के अधिकता से हमरो पर्यावरण संरक्षित हुए छे और एकरा से मानव जीवन का प्राण वायु जेकरा ऑक्सीजन कहे छो वो मिले छे। हमरो देश में यानी कि भारत देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनेलो जाए छे। याद रखियो, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनेलो जाए छे। एकरा में वन के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति लोगों का जागरूक करलो जाए छे। एकरो मुख्य उद्देश्य वन के सुरक्षा आरो ओकरो कटाई से जीव जंतु पर जे दुष्प्रभाव पड़े छे ओकरा प्रति जागरूकता फैलाना छे। यानी कि जंगल काटला से, पेड़ पौधा काटला से खाली पर्यावरण का नुकसान नहीं होइ छे, बस बल्कि साथे साथ ओकरा में रहे वाला जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटो छोटो कीड़ा मकोड़ा से लेकर के बड़ो से बड़ो पशु पक्षी तक भी ओकरा से प्रभावित होइ छे। तो यही वास्ते पेड़ का काटना नहीं छे, जंगल का नष्ट करना नहीं छे, बल्कि ओकरा संरक्षित करना छे, बचाना छे। भारत में आज़ादी के तुरंते बाद से वन आरो वृक्ष के काटे से रोके के प्रयास सरकार, सामाजिक संस्था और पर्यावरण प्रेमी द्वारा आरंभ कर देलो गेलो छले। एक तरफ जहां 1950 में जंगल का बचावे के वास्ते वन महोत्सव के शुरुआत करलो गेले, तो वहीं दूसरी ओर 1970 के दशक में जब देश में वन संपदा के अपार भंडार छले, तब भी पर्यावरण के चिंता करता हुआ गढ़वाल के लोग ना वृक्ष का बचावे के वास्ते एक आंदोलन शुरू करलो हले। हाँ, आंदोलन के नाम छले चिपको आंदोलन। अगर हमरो पूर्वज ना पेड़ पौधा नहीं लगेलो होती है तो बताओ की होती है। वृक्ष का धड़ाधड़ सिर्फ काटलो जितो आरो एक रास्ता जे छे वृक्ष तो खत्म हो चली थी। आ जब वृक्ष खत्म होती है तो बताओ कहाँ सा लकड़ी, फल, फूल, कंद, औषधि, दवाएं आरो बहुत कुछ मिलती है ना, मिल पड़ती है, शायद कहियो नहीं मिलती है। तो यही प्रकार से आज हम यदि पर्यावरण का संभाले के वास्ता गंभीर नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो बताओ कि आवे वाला जे पीढ़ी होते वो ओकरा साफ सुथरा पर्यावरण हम असने दिया सकबे की कह रहलो छो? हाँ कि ना? नहीं ना? तब यही वास्ता आवे वाला पीढ़ी का एक स्वच्छ, हरित, स्वस्थ धरती दे वास्ता, पर्यावरण दे वास्ता हमरा सनी का हमेशा है जागरूकता फैलाना छे और अपने हिंडा सा प्रयास करना छे कि खूब भी ढेर को पेड़ पौधा लगाना छे।

कल का बढ़ाना छे ताकि सब कुछ बढ़िया होते। आ जब बढ़िया होते तो सब कुछ मन लगते तो फिर काम जैसे वो बहुत जल्दी और फटाफट होते। और जब काम अच्छा से होता तो गीतों लात सुने मन लगते, ठीक नहीं?

0: हुए हर क्षेत्र में महिला अपना परचम लहराए रहलो छे। अहिने एक महिला हमरा सामना में आखना बैठलो छे जे कि सपना में क्या जे छे कि हकीकत में बदले के हुनर राखे छे आरो आत्मनिर्भरता के मिसाल हमरा सामना में बैठलो छे श्रीमती प्रिया सोनी जी। सबसे पहले हम अपना के अपना स्टूडियो में बहुत स्वागत करे छे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अपने सिनी का
0: जी। अपने से पहला प्रश्न छे कि अपने के बहुत काम जे समाज में देखलो जा रहा छे जे कि स्वास्थ्य से संबंधित छे, शिक्षा से संबंधित छे, रोजगार से संबंधित छे, तो अपना ई बताइए कि अभी वर्तमान समय में अपने उद्यमिता के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में की करी रहलो छे।
1: जी, सबसे पहले तो अपने सिनी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छिए और समस्त आकाशवाणी टीम का बहुत बहुत आभार हृदय के गहराई से प्रकट करे छिए जे हमरा इतना सुंदर अवसर अपने सिनी प्रदान कर रहिए हैं। और हम सिनी जे छे बहुत सारे चीज पे वर्क करे छिए और जैमे कि महिला उद्यमिता जे छे मेन प्रमुख छे और महिला उद्यमिता के लिए हम सिनी काफ़ी चीज काम करे छिए जैमे कि महिलाओं का जे छे आत्मनिर्भर बनाबे के कई तरह से हम सिनी कार्य करि रहल छिए जेकरा में कि कुटीर उद्योग छे। चूँकि आय यदि हम यदि देश का पुनः विश्व गुरु के रूप में देखे चाहे छिए या विकसित भारत के कल्पना करे छिए तो हमरा देश के आधी आबादी जे छे 148 पहले तो पूरी आबादी कितना छे 148 करोड़ जेकरा में कि 70-72 करोड़ तो महिलाएं ही छथिन। तो जब आधी आबादी महिला छथिन तो एकरा में छे जब आधी आबादी का भी तो सशक्त करे के जरूरत छे। तो बस आधी आबादी का जब तक हम सिनी सशक्त नहीं करबे तो हम सिनी विकसित भारत के कल्पना केना
0: कल्पना नहीं करे पड़े छे। तो अपने ई बताइए कि कुटीर उद्योग के चर्चा अपने कर लिए तो कुटीर उद्योग में की करे छे अभी।
1: कुटीर उद्योग में हम सिनी यहाँ पर जे छे सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार और अब जे छे पहिने तो हम कुटीर उद्योग में काफी छोटा स्केल पर काम करे रहिए लेकिन अब धीरे धीरे अब तो 5 साल हो गए तब हमरा साथ काफी जे छे महिलाएं जुड़ गए छथिन, हजारों के संख्या में जुड़ल छथिन और हम सिनी मिलेट्स पर भी कार्य करी रहल छिए।
0: केना करे छिए जे जत्ते चीज बोललिए सत्तू बनाए छिए, पापड़ बनाए छिए, अचार बनाए छिए, ती केना करे छिए? कोई हस्तचालित मशीन के माध्यम से बनाए छिए या ओकरा लिए मशीन स्थापित करले छिए? एक केना की प्रोसेस छै एकरो?
1: देख, सबसे पहले तो हम ई कहल चाहे छिए हमें जे ई जे हम महिला उद्यमिता के क्षेत्र में जे कार्य करी रहल छिए एकरो उद्देश्य छै, उद्देश्य ई छै कि आजकल के सबसे ज्यादा परेशानी छै हमरा सिनी के स्वास्थ्य, प्रकृति और पर्यावरण।
0: जी जी,
1: लोगो के बढ़िया खाना, भोजन नहीं मिल पा रहे जेकरा वजह से जे छे आप पहिना जे एजिंग सिस्टम देखे थे वो काफी जे रहे 80-90-80-90 के रहे लेकिन आप जे छे 60 में या 18-19 के में भी खत्म भए रहल छे।
0: जी जी,
1: हार्ट अटैक के प्रॉब्लम तेकरे में हम सिनी जे छे वो प्राकृतिक और कृत्रिम तरीका से जो एकदम नेचुरल वे जे छे प्राकृतिक तरीका से वो सब तैयार करी रहल छे। कोई बहुत मशीनरी नहीं, कोई मशीन नहीं यूज करे छे जेना पहिना अपने सिनी का याद होते जे जाता से
0: जाता से
1: तो वो
0: पिसलो जाय रे माय दादी
1: सनी। अभी हाँ। हमरो जे अभी कुटीर उद्योग में जे महिलाएं सब काम करे छथिन तो सब अभी भी जाता से भी दाल दर्रावे छे, जाता से ही ओकरा से की छे ना पोषक तत्व सारा जे छे मौजूद रहे छे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो पा रहे छे। और एक बात और है छे जे महिलाएं जे बहुत पढ़ल लिखल नहीं है छे पढ़लो लिखलो हुनको सिनी का एकरा में रोजगार मिले छे। तो हमरा सिनी जे अभी रोजगार जे दे रहलो छिए जे बहुत कम पढ़लो लिखलो छे ओकरो दे रहलो छिए, जे हाईली एजुकेटेड छे जे MBA करलो छे हुनको सिनी कहे छे। तो हम सिनी ई टाइप के काम कर रहल छे ताकि हमरा सबके साथ जुड़ी का सड़क से लेकर सदन तक, चूल्हा से लेकर चंद्रयान तक जे छे महिलाएं जा सके छे।
0: बहुत बहुत ही बढ़िया अपने बात कर लिए कि आरु जे मिलेट्स के बात अपने कर लिए जेकरा हम के कहलिए पोषक तत्व भरपूर रहे छे तो ओकरा में कौन कौन अनाज के अभी शामिल करले छे अपने?
1: देखियो, सबसे बड़ी बात छे कि आप जहाँ देखबे हमरा हम सिनी बहुत सारे इंटर्नशिप भी कराबे छे बच्चा के जे बाहर बाहर भी करे छे और कई हम सिनी सर्वे भी कर लिए हैं जे आखिर मोटा अनाज के बारे में लोग कहने न जानी रहल छे। तो मोटा अनाज के बारे में अभी अवेयर नहीं छे, लोगों का पता नहीं छे, भले ही वो PG PhD भी करी रहल छे लेकिन यदि वास्तविक स्थिति यहाँ देखबे धरातल पर तो मोटा अनाज के बारे में नहीं जाने छे। तो हम सिनी कार्य करी रहल छे, प्रोडक्शन भी है छे और ओकरा साथ साथ जे छे अवेयर भी कह रहल छे पॉजिटिव ग्रेन्स की है छे जे कि नेगेटिव ग्रेन्स की है छे और न्यूट्रल ग्रेन्स की है छे। तो सारा चीज हम सिनी जे छे बताबे छे जेना कि मोटा अनाज में जनरली लोग जाने छे ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का है
0: मक्का,
1: लेकिन एकरा से ऊपर भी है छे जेना कि कोडो, फॉक्सटेल है छे, बार्नयार्ड है छे, सावा है छे जे कि पुराना जमाना में लोग खाइत रहे।

0: 1960 से पहले के दशक में सब बहुत यूज करते रहे, लेकिन हरित क्रांति के बाद छे तो ओकरा लोग धीरे धीरे भूलो गेले छे, जे कि आब पहना एकरा जे छे गौ गरीब के भोजन कहे छे। लेकिन आब पुनः ट्रेंड में अले हैं, इंटरनेशनल जे मिलेट्स ऑफ ईयर घोषित कर लखिन हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ओकर बाद जे छे आब एकरा एलिट क्लास के भोजन भी कहे छे, देखे तबे जो मक्का रोटी और साग भी है।
1: अच्छा, और एकरा जे छे जब बना ले छे तो एकरो एकरा बेचै केना छे, बाजार केना उपलब्ध कराबै छे?
0: बाजार भी एकरा उपलब्ध है, लेकिन एक टाइम से पहले हम ये कहे चाहबे जे प्रोडक्शन जे एकरो है छे या प्रिपरेशन जे है छे एकरो,
1: जी जी,
0: तो ओकरा में काफी बारीकी तरीका से, क्योंकि किस किस मिथ छे, किस किस भ्रांतियां छे, जे जना रागी ही छे, आप देखियो वो कैल्सियम रिच फूड छे, बहुत कैल्सियम छे ओकरा में, लेकिन लोग कहे छे जे एकरा गर्मी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन एकरा वो सब कोनो बात नहीं छे, एकरो जे प्रोडक्शन के तरीका है छे ना ओकरा ऊपर डिपेंड करे छे। यदि पहना के जे सिस्टम रहे गांव में जना गेहूं का पहना सुखा का फिर ओकरा धूप में आदमी देत रहे ओकर बाद पाउडर बनावत रहे, तो हम सनी जे भी प्रोडक्शन करे छे मिलेट्स के तो काफी प्रोसेसिंग से, ताकि ओकरा गर्मी में भी यूज कर सके छे, ठंडा में भी यूज कर सके,
1: मतलब कोई भी मौसम में अच्छा से प्रयोग करा पड़े छे, ओकरा नुकसान नहीं होते। तो बहुत अच्छा ई बात आपने जानकारी दिली। अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम करी रहलो छे, स्वास्थ्य क्षेत्र में की काम करे छे अपने?
0: हां, स्वास्थ्य के लिए भी, और सॉरी एकरा से पहले आहा क्वेश्चन कर लिए अपने, लेकिन हम नहीं बोला पा लिए मार्केटिंग के। मार्केटिंग जे छे ओ जे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट छे, जे कि एक और एकरा में रहे छे, जे कि एमबीए करना छे बढ़िया बढ़िया जगह से, वह सिर्फ मार्केटिंग के आ सके छे, लेकिन हम एता एकरा जे छे गलत प्रूफ कर लिए। हमरा यहाँ जे ओहन जे लड़कियां छे, जे महिलाएं छे, वो भी ओकरा ओ हिसाब से प्रशिक्षण दे गेलो छे, जे वो भी मार्केटिंग करी रहलो छे बढ़िया से। और अभी जे छे जे कि मिलेट्स के बारे में भागलपुर शहर में खास कह कर लोग अभी नहीं जानित रहे, आप जे छे यहाँ के जे हमसिनी यहाँ जो महिलाएं प्रोडक्ट तैयार करे छे, आप जे हजारों के संख्या में दुकान में यहाँ उपलब्ध छे,
1: मतलब सामान्य दुकान में भी उपरा पहुंचा देलो जाय छे, और वहां से लोग के
0: अब जागरूक
1: खरीदे छे, जागरूक छे, बहुत बहुत ही तो बहुत बढ़िया छे कि लोग जुड़ी रहल छे, और एक अच्छा जे छे कि आमदनी के स्रोत बनी रहलो छे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना की काम करे छे?
0: देखियो एकटा हमरो समीकरण बनलो छे, क्योंकि कोई ना जे कोई भी काम करे छे तो ओकरा एक उद्देश्य होना चाहिए, हम एक इक्वेशन बनेना चाहिए समीकरण, स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस रोजगार प्लस सुरक्षा प्लस सम्मान इक्वल टू महिला सशक्तिकरण।
1: की बात छे बहुत बढ़िया फार्मूला लेकिन आपने बने लिए, बहुत
0: बढ़िया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम जे छे बहुत सारा काम करी रहल छे, जना कि सैंडिस कंपाउंड जे छे वहां पर एरोबिक सेवा प्रदान करे छे, जेमे कि निशुल्क सेवा है छे, कई महिलाएं आवे छे काफी दूर दूर से आवी रहल छे, और बहुत तरह की बीमारी से निजात पावी रहल छे वहां पर।
1: तो ओकरा में की कराई छे? योग,
0: हाँ,
1: ध्यान प्राणायाम,
0: ओकरा में छे ताली वर्कआउट है छे, जना ताली म्यूजिक के साथ में जे छे ना एक एक्सरसाइज छे, क्योंकि आय काल सबसे बड़ी समस्या छे जे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, जेकरा की आम भाषा में कहे छे जेकरा डिप्रेशन के समस्या जे रहे छे, जेकरा काफी मतलब जे ना बोले छे
1: ना अवसाद में जे चली जाय छे,
0: तो वो समस्या छे, वो समस्या से निजात पावे के लिए एकमात्र यदि छे तो वो एरोबिक्स छे, क्याकि ओकरा में मॉर्निंग के हवा प्रकृति के साथ जे छे वो काफी बढ़िया एक्सरसाइज है छे।
1: जी, शिक्षा के क्षेत्र में अपना की काम करे छे?
0: शिक्षा के क्षेत्र में हम सनी कई बच्चा का जे बच्चा जेकरो पेरेंट्स जे एबल नहीं छे, योग्य नहीं छे अपन बच्चा का पढ़ावे के लिए, तो ओकरा हम सब निशुल्क शिक्षा प्रदान करे छे, जेकरा में की जना बुक्स प्रोवाइड करे छे, बुक्स भी दे छे, या फिर इंटर्नशिप जे है छे हम सनी अभी भी कई महाविद्यालय का जे छे निशुल्क प्रदान कर लिए, ओकरा में जे छे जे कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में बच्चा सब छे ओकरा सनी का मार्केटिंग का भी जे एबिलिटी डेवलप करे लिए, ताकि यदि बाद में यदि कोई गवर्नमेंट जॉब यदि नहीं है छे तो अपन पैर पर खड़ा भए सके छे, कई तरह के हम सब उद्योग जे छे ग्रोसरी और कॉस्मेटिक के शॉप भी हम सब ओपन करवावे छे, जेमे कि हम सब काउ डंग पर जे गोबर से कई तरह के सामग्री बने लिए हैं गोबर से,
1: तो बहुत बहुत बढ़िया बात छे,
0: धेनु सदा नाम रही नाम, गौ की सुरक्षा भी बहुत जरूरी छे,
1: तो एकरा में केना करे छे गोबर से की कर
0: गोबर से भी, हाँ बहुत बढ़िया छे, और गोबर से जे छे पंचगव्य द्वारा सुगंधित गोइठा बने छे, जेकरा की उपला भी कहे छे, ओकरा में मॉस्किटो मच्छर भगावे वाला बत्ती बनावे छे, धूप बत्ती बने छे, और दीपावली में तो हमरा लागे छे जितना काम है छे सब छोड़ी के हमसनी ओकरे में
1: व्यस्त रहे छे,
0: हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा मार्केटिंग भी होइ छै
1: त अपना शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करै छियै स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम करै छियै
0: हाँ।
1: सुरक्षा के जे अपने बात करलिए कि एकरा में सुरक्षा तब जाय के महिला के आत्मसम्मान सुरक्षा के लिए की अपने के काम छै समाज में
0: देखियो आजकल यदि अहाँ अपने श्री देखत हेबे जो पेपर सब में भी जो वही रहे छै नै त आजकल जे जे वृद्ध अवस्था में 60 साल के बच्चा 60 साल के वृद्ध माता सुरक्षित छथिन ना ही 6 महीना के बच्चा सुरक्षित लेकिन है छे कि यदि आहां कतो भी जाय छे कतना भी शिक्षा रह कतनो भी धन हुआ लेकिन अपना पावर सेल्फ डिफेंस नहीं आवे या अपने का तो सब बेकार छे त हम सनी सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग दे छिए दिलवावे छिए ताकि आप कहीं बाहर जाए कहीं आप कब बाहर जाते हैं बाहर जाए छिए और सडनली अटैक है तो आहां मतलब अपने जे छे केकरो इधर उधर नहीं देखे कि अपन रिवेंज सेल्फ डिफेंस खुद कर सके छिए
1: अपने के बारे में जहाँ तक जानकारी छे कि अपने पहले MBA कर लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए वो भी शहर से बाहर रह के तो ऐ प्रकार के बात कि समाज के सेवा करना छे शिक्षा स्वास्थ्य महिला रोजगार उद्यमिता ये सब पर काम करे के कहाँ से अपने कई प्रेरणा मिले और केना अपने शुरू कर लिए है
0: ये हमारे सनी के मतलब बच्चा से ही हमारा बचपन से ही एक माहौल रहे जो मनुष्य जीवन मिलना चाहिए तो कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए और मनुष्य जीवन मानव जीवन तभी सार्थक है छे जब अपन धन और अपन कर्म ककरो दोसर के लिए जैसे अहाँ खराब हो सके छे तो हमारे सनी शुरू से ही यही देखलिए तो जब हमारा इच्छा होले तो हम कहलिए नहीं हमरो सनी कई काम करना चाहिए
1: चलिए तो मतलब जे घर के परिवार और माहौल रहे वैसा हाँ। अपना ये सीखलिए और आगू समाज के लिए सोच लिए
0: हाँ, हाँ।
1: अभी के समय में जहाँ देश में बहुत अधिक जे छे कि रोजगार के मारामारी छे लाखों जे छात्र छात्रा छे उ सड़क पर रहे छे आए दिन आंदोलन होते रहे छे तो अहनो सब जे शिक्षित और जेकरा की रोजगार प्राप्त नहीं छे युवा युवती खास करी नया विद्यार्थी सनी जे छे ओकरा अपना की संदेश दे ले चाहे छे
0: हम यही संदेश दे ले चाहे छे जे आजकल यदि हाँ सही मायने में अपने का यदि एजुकेशन छे शिक्षा छे तो हाँ बेरोजगार नहीं छे अपने क्योंकि अपने का बहुत सारा फील्ड है छे जे बहुत सारे जे कि सेल्फ अपने उद्यमी भी बन सके छे बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए का ओकरा जे छे सेल भी करा पा रहे छे तो कभी भी जे छे नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाए कोनो भी प्रकार के रोजगार करी का अहां जे छे अपने जे छे इंडिपेंडेंट हो सके छे
1: आखिर जे छे कि एक आरो सवाल छे कि केना जुड़े बहुत लोग के अपने तो जना कि मान लीजिए कि एक पढ़ाई कर लिए कि केना केना के बिजनेस हुआ पड़े केना उद्यमिता शुरू करे पड़े लेकिन कोई साधारण मैट्रिक पास छे बच्चा कोई इंटर पास छे कोई स्नातक कर लके और कोई साधारण कंपटीशन के वहां तैयारी करे रहे कोई प्रतियोगी परीक्षा के लेकिन अब कोई एहनो स्थिति बनी गेलो छे तो जेकरा पास पैसो नहीं छे एहनो कहे छे कहलो जाय छे ना कि उद्योग शुरू करे के लिए एक राशि होय के चाहिए ओकरा पास पैसो नहीं छे गरीबी में जीवी रहलो छे तो आखिर में केना अपनो कोई उद्योग शुरू करते
0: सबसे पहला बात छे कि जब कोई चीज करे के इच्छा है छे तो दृढ़ प्रबल शक्ति होना चाहिए एक इच्छा शक्ति होना चाहिए जब इच्छा शक्ति प्रबल है छे तो कुनू भी कितना बड़ा बड़ा पहाड़ कभी पार करी जाए छे और ओकरा पता भी नहीं चले छे यदि कुनू भी लक्ष्य जे अपने यदि मान लिया कुनू पैसा यदि पैसा के प्रॉब्लम छे तो आर्थिक यदि कुनू प्रॉब्लम छे समस्या छे तो आप छोटा सा रोजगार करियो लेकिन ओकरा पर छे जे आप 100% जे छे अपना ओकरा पर पूरा फोकस करियो इने जो थोड़ा ई वर्क भी करी रहला छे थोड़ा वो वर्क भी करी रहला छे तब नहीं होते ये पूरा फुल फोकस यदि एक छोटा सा भी रोजगार क्या यदि अपने करे छे तब फिर वो सक्सेस जरूर हेते
1: मतलब कि कोई भी रोजगार छोटा रंग शुरू करी देते है और ओकरा पर पूरा मतलब
0: पूरा फुल फोकस
1: यदि करते ध्यान पूरा ओकरा केंद्रित करी देते कि भाई हमरा यही करना छे तो वो सफल
0: और एक बात और बोली रहला छे जना कि अपने कहलिए जे एजुकेशन तो बिजनेस के लिए एजुकेशन या बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट के जरूरत नहीं छे हमरे पास जे अभी हजारों के संख्या में बहने जुड़लो छे ओकरा में 50-60% ई प्रकार के महिलाएं जुड़लो छे जेकरा की बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं छे क्वालिफिकेशन नहीं छे लेकिन आज के समय में जो बहुत हाईली जे एजुकेटेड छथिन और जे MBA करलो छे ओकरो कान काटी रहलो छे
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया संदेश अपने हमरो श्रोता सनी के दिलिए कि यदि उद्यम करना छे, कोई रोजगार करना छे, तो ओकरा लेली बहुत ज्यादा पढ़लो लिखलो होय के भी जरूरत नहीं छे, आरो बहुत अधिक धन पैसा के भी जरूरत नहीं छे, एक छोटो राशि से भी कोनो न कोनो रोजगार शुरू करलो जा सके छे। कने के स्थिति अभी एहनो छे कि हरेक जनसंख्या बहुत जे छे कि तेजी से बढ़ी गेलो छे देश के, आरो हर व्यक्ति के सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं हुआ पड़े छे, तो एहनो समय में उद्यमिता खास करी के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग है सब जुड़ी करी के जे छे कि अपनो जीवन के सफल बनाव सके छे, अपनो अच्छा काम कर सके छे, ई अपने के संदेश छे।
0: और एक बात हम और कहेल चाहबे, हमरा थ्रू जे भी श्रोतागण सुनी रहलो छे, बहुत जगह आज जे छे छोटा छोटा स्केल पर बहुत सिनी वर्क करी रहलो छे, हुनका सिनी का प्रॉब्लम है छे मार्केटिंग में, तो यदि मार्केटिंग में जिनका भी प्रॉब्लम है छे वो हमरा से जरूर संपर्क करे और हम उनका मार्केट प्रोवाइड करबे।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात छे कि अपना से संपर्क करते आरो लोग जैसे कि अपना से जुड़ी के भी समाज में अपनो नाम भी कमावे पड़े छे और पैसा भी, तो बहुत बढ़िया संदेश।
0: और सभी महिला का हम एक यही कहल चाहे कि अपने सनी का अद्भुत शक्ति छे, बहुत ही पावर छे, अतुलम तत्र तत्तेजा सर्वदेव शरीर रजम एक अस्थम तद्भू नारी सर्वव्याप्त लोक त्रयम तिशा, तीनों लोकों में व्याप्त सभी देवताओं से उत्पन्न शक्तियां जब एकत्रित हुई थी तब माति शक्ति का जन्म हुआ है। आप अपने सनी का अद्भुत शक्ति छे, शक्ति का पहचाने के कोशिश करियो और देखियो के ना सबसे आगे अपने सिनी ही आवे छे और देश का विकासशील से विकसित और पुनः विश्व गुरु के रूप में जे छे एक बार आवे के कल्पना का साकार करबे।
1: जी बहुत अच्छा संदेश दिल लिए अपने और हमरो श्रोता सबका एकरो जरूर लाभ होते, निश्चित रूप से अपने के ई वार्ता ई बातचीत से हमरो जे श्रोता सनी छे हौ लाभान्वित होते। अपने के हमरा स्टूडियो में आवे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अपने सिनी।
2: महिला उद्यमिता विषय पर अभी हम अपने सुन लिए भेंटवार्ता, भेंटवार्ताकार छे प्रियंका कुमारी और भेंटकर्ता छे कुमार गौरव, तो इतना अच्छा भेंटवार्ता वास्ते हिनका बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और यही भेंटवार्ता के साथ आव आज के अंग दर्पण कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो छे, मिलवे अगला कार्यक्रम में, तब तक हमारा दा विदा, सबका अकलू के नमस्कार।

अंग दर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है और आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से

0: और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले दिन कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस महिला की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन देही 2025 1 जुलाई से कामयाबी के साथ नाफिज हो गया है। वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से इस मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की इमदादी रकम जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज़्यादा की मुद्दत सर्फ हो गई थी, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे मुल्क में महज 1 दिन में नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि विकसित

0: भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस जाब्ते के तहत अगले 5 वर्षों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक मरकजी वज़ीर आजहानी रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के महरूम और कमज़ोर तबके की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रामविलास पासवान को कौमी खिदमात के तहत उनके जज्बे को हमेशा याद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान की पूरी ज़िंदगी गरीबों की फलाह के लिए वक्फ थी। बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा। ये इजलास 24 जुलाई तक मुनक़िद किया जाएगा। मानसून सेशन के पहले दिन ऐवान में माली साल 2026-27 के ज़िमनी बजट पेश किए जाएंगे। अगले काम के दिन इस मौजू पर बहस व मुबाहसा होगा और वोटिंग के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। इधर पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून सेशन बुलाने के हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मौजू पर बामानी बहस पर तवज्जो दी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां यौम तासीस आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। पटना वाक़े पार्टी सदर दफ्तर में मुनक़िद प्रोग्राम में पार्टी के रियासती सदर मंगनी लाल मंडल समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने अपने पैगाम में कहा कि पार्टी का क़याम गरीबों, इस्तेहसाल ज़दा और अक़लियतों के हकूक़ की लड़ाई के मकसद से किया गया था। उन्होंने पार्टी के इत्तेहाद पर ज़ोर देते हुए कारकुनों से अवामी मफाद के मौजूआत पर लड़ाई लड़ने की अपील की है। श्री यादव ने इस मौके पर पार्टी कारकुनों के जज्बे की तारीफ की। मुजफ्फरपुर ज़िले के साहिबगंज से बीजेपी रुकन असम्बली राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हलाकत और असलहा एक्ट के मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली के एक अदालत ने सुनवाई करते हुए रुकन असम्बली को इस मामले में कसूरवार ठहराते हुए मुतासरा ख़ानदान को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी वाक़े राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान जॉय फायरिंग में एक खातून की मौत हो गई थी। मरकजी हुकूमत ने रकीक कुदरती गैस LNG की सप्लाई से एमरजेंसी पाबंदियां हटा ली हैं। ये फैसला मगरबी एशिया में जंगबंदी के बाद हरमूज वाटर डुमरू वस्त से कुदरती गैस की सप्लाई फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई के हुक्म में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत उन खास इमरजेंसी जैसे इल्तज़ाम को हटा दिया गया है जिनके तहत हुकूमत को मुल्क में पैदा कुदरती गैस और LNG के अलाटमेंट में अव्वलियत देने की इजाज़त थी। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक। गुजरात

ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश

0: प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान
1: जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे

0: यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
0: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दिन दिन वो मर ढाला पे है जाई पे, पानी में धूरा ढेला।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
6: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
7: अच्छा, जे जान पड़े तो लेगो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला।
6: सावन में
5: विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन देका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के पहले गीत की चिट्ठी आप सबों ने भेजी है। ये हैं लालू चक भागलपुर से भेजने वाले हैं। विष्णु कुमार चौधरी, श्रीमती गायत्री देवी, आरती कुमारी, रेखा, पूनम, रीता देवी, अंजलि और इनके घर के सभी सदस्य। पटना बिहार से हैं बेबी प्रियंका, छोटी मुस्कान, ममता और इनके घर के सभी लोग। दोरैया गंगदौरी से आपने ये चिट्ठी भेजी है। भेजने वाले हैं सांदेव हरी। कवित्री देवी तनुजा अनु आंचल एवं इनके परिवार के सभी लोग। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप अनिल वर्मा। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। गंगा बिहार कॉलोनी रानी तालाब से हैं नंद किशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम, मनोज, अमित, बबली, स्वेटी, सुरुचि, रॉली, पायल, अनवी, आशी और ईशु बाबू। ये हैं बड़ी गोविंदपुर मुंगेर से मुकेश कुमार, बबलू और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेश नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रो नामिका, उत्कर्ष बेताम। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म चांदनी का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर एवं बाबला मेहता ने। गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीतकार हैं शिव।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। आप भी अपने पत्र और ईमेल हम तक भेज सकते हैं और सुन सकते हैं हमारे केंद्र से आपकी पसंद के गाने। तो आप अपने पत्र हम तक भेज सकते हैं, उसके लिए हमारा पता आप जान लें। हमारा पता है फिल्म संगीत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 812001। और ईमेल आप हम तक भेज सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस

पर हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। तो हमें आपके पत्रों और ईमेल का रहेगा इंतज़ार हमारे अगले कार्यक्रम में। और कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत, जिसे गाया है अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली ने। गीत गुलजार ने लिखे हैं, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय और फरमाइश आप सबों की है। यह है अनुरुद्ध चौकचुन्नी मधेपुर से, प्रेमचंद्र ठाकुर, रानी मीना ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी लवकुश, अरुण झा। और ये हैं किशनगढ़ अजमेर से शैलेश झा, नौगछिया मुमताज मोहल्ला से हैं जफर अंसारी, अतहर अंसारी, शौकत अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से हैं सुजीत रॉय, दीपांकर रॉय और तमाम रॉय परिवार। मोहल्ला सदर उद्दीन चक से हैं मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिम उद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य। शैलबाग भागलपुर से हैं अभिजीत, अभिषेक, सोनी भाविया, सोमो पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी। दिल्ली शहर से हैं हीना नाज, आदिबा और फातिमा नाज। सुल्तानगंज सीतारामपुर से हैं प्रमोद पासवान, सुष्मिता सागर, दीपा करीना और सूरज। और एकता रेडियो श्रोता संघ बड़ी खंजरपुर से हैं भाई गुलफराज आलम, शमा आरा और जमालुद्दीन नेपाली। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है आपके पत्रों और ईमेल पर। अगले गाने की फरमाइश आप सबों ने भेजी है लाल माता सुदामा नगर रटलई जिला झलवारा राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी नीलकोटी मोहल्ला साहिबगंज भागलपुर से हैं छोटू सृष्टि मोहित राज सोनम डॉक्टर सुभट कुमार मंडल। ये है मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार ऋतिक रोशन और डोलू बैजानी चौबे टोला से हैं वर्षा वंदना कन्हैया मेघा शालू सानू निहाल साक्षी कोको चिकू पवन कल्लू मल्लू सोनी नीतू मीतू ईशु अनु और आद्य। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से हैं गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

और ये आखिरी गाने की फरमाइश आप सबों ने भेजी है, मुजाहिद पूर्व पूरब टोला भागलपुर से मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरवाज खान, अयास खान और महमूदा खातून बसवारा पुंसिया से हैं, पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू, राजा सौरभ और इनके घर के सभी सदस्य। नैना कुमारी ने चिट्ठी भेजी है घंटाघर से, ये मैसेज हमको मिला है, जबलपुर से भेजने वाले हैं मुकेश कुमार, पटना से हैं अरशद अहमद, जरीस वासी अहमद, साजील और शादाब अहमद, कटोरिया शहादत अली, कटोरिया से हैं शहादत अली, सालीक शहादत, सिदरा शहादत और शाहिना परवीन, चंपा नगर से हैं शबीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। आप सबों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत जिसे गाया है अलका याग्निक ने, गीत समीर ने लिखे हैं, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।

0: एक मराठी गीत सिखा रहे हैं। इस गीत के गीतकार हैं आनंद राव टेकाड़े और इसके धुन एक पारंपरिक धुन के आधार पर श्री कानू घोष ने तैयार की है। अब तुम कागज और पेंसिल लेकर बैठ जाओ और यह गीत लिख लो।
1: आनंद कंद ऐसा हा हिंद देश माझा, आनंद कंद ऐसा हा हिंद देश माझा, सत्यासी ठाव देई वृत्तीस ठेवी न्यायी, सत्यासी ठाव देई वृत्तीस ठेवी न्यायी, सत्यासी मानी राजा हा हिंद देश माझा, जगदीश जन्म घेई पदवीस थोर नेई, जगदीश जन्म घेई पदवीस थोर नेई, चढ़वी स्वधर्म साजा हा हिंद देश माझा, जनकादि राजयोगी शुकवास देव त्यागी, जनकादि राजयोगी शुकवास देव त्यागी, घुमवीति कीर्ति बाजा हा हिंद देश माझा, गंगा हिमाचलाची वसती जिथे सदाची, गंगा हिमाचलाची वसती जिथे सदाची, हो ऊनी राही कलिजा हा हिंद देश माझा, पृथुराज सिंह शिवजी स्वातंत्र्य वीर गाजी, पृथुराज सिंह शिवजी स्वातंत्र्य वीर गाजी, करती रणात मौजा हा हिंद देश माझा, टिळकादि जीव देई प्रसवूनी धन्य होई, टिळकादि जीव देई प्रसवूनी धन्य होई, धरती स्वलोक काजा हा हिंद दे।

0: देश माझा जगी त्या विना कुणीही स्मरणीय अन्य नाही।
1: रहे ड्यूरेशन 17 मिनट्स 2 सेकंड्स।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी, डाकी भी तुमको, तुम्हें जे सर्वनाम, क्यों नाम धरी, डाकी भी तुमको, तुम्हें जे सर्वनाम,
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक तुमको, नपारे देखाई, तुम्हें जे देखाओ ताहारे, आलोक तुमको।

0: नपारे देखाई
1: नपारे देखाई
0: तुमे जे देखाओ ताहारे
1: तुमे जे देखाओ ताहारे
0: तुमे जे बेढ़ी चो
1: तुमे जे बेढ़ी चो कोटी विश्वर
0: सबुरी भीतरे बाहरे
1: सबुरी भीतरे बाहरे
0: तुमे जे बेढ़ी चो
1: तुमे जे बेढ़ी चो कोटी विश्वर
0: सबुरी भीतरे बाहरे
1: सबुरी भीतरे बाहरे।
2: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
0: लुहा
1: होई तुम्हें झरी पड़ा परा केते नयनर कोणरु
0: लुहा
1: होई तुम्हें झरी पड़ा परा केते नयनर कोणरु
0: हस होई पुणी
1: फुला परी फुटा केते जे नरम अधरु
0: हस होई पुणी
1: फुला परी फुटा केते जे नरम अधरु
0: केऊ नाम धरी
1: डाकी भी तुमकु
0: तुमे जे सर्वनाम।
2: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
0: एक दुई।
2: अब हम गाना सीखेंगे।
0: केऊ नाम धरी डाकिबि तुमकु 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया भाषा में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब से संध्या 5 तक मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर एवं FM 100.1 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैले के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
2: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन रानी हीरावती?
2: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका

0: जैसे बूढ़ी हो गई है। मैं पूछती हूँ तो चुप क्यों?
1: मित्र, अब क्या किया जाए?
2: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
0: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
3: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
4: भला हम कौन होती हैं
3: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
4: चलो।
0: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
2: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए से नहीं लगा रहा था, मैं तो यही देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
5: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
0: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
5: परंतु देवी,
0: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
5: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
0: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का हम चले यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवाकर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कहानी सुनिए। मैं नाग को बाल करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराज का से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसिंह को सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचे।
2: जयसिंह इधर आओ।
3: कहिए आज ये गौतम,
2: कान में सुनो।
4: जय हो, अरे पुत्र की जय हो। विराजी आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
4: आज तो कुछ कम है देव।
5: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
6: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य धूप सिद्धि को बुला लाओ।
7: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया। ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
4: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
6: अरे बाकी काल में मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
6: मेरा तो अन्न करता जा रहा है, सारे शरीर में
0: जा रहा
4: है, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो ये दीन ब्राह्मण को।
5: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
6: महाराज मैं आपका पाल सका हूँ, सुना तो मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
7: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
7: देव की जैसी आज्ञा।
6: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा कीजिए।
4: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
7: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
4: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
7: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना।
1: और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रणवन में पहुंचा देना, समझे?
6: जो

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छा सखी, तुम भी मुझे बना रही हो?
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी,
1: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये
1: छोटी रानी इरावती है।
0: ओ
1: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सा नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है।
1: अच्छा, तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
2: प्रिय,
3: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र, क्या बताऊं, तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बकलावल का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
3: अरे बकला बलिका, उधर देख, उस नन्हे अशोक के पत्तों को वो हिरण चले जा रहा है। आ, उसे भगा ले।
0: चलिए
3: महाराज, घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
4: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वहीं चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
4: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
4: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
0: ये कृतघ्न ब्राह्मण, ठहरिए आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहां है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहां एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी रावती,
1: सच्ची बकुला बलिका, ये कैसा है?
6: बकुला बलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओहो, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा?
4: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुला वालिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
6: अच्छा तो ये सब इस ब्राह्मण के करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे पूछने देता?
6: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
7: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के पूजने का उत्सव मनाएंगी।
8: प्रासाद वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीरसेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं।

0: विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बधा रहे।
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बधा रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए देव विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो। आर्य पुत्र फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
4: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ।
4: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
5: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
5: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देव देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
5: अरे राजकुमारी आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
2: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी?
5: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी है।
3: कैसे?
5: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सिंह को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी है।
2: ओह तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह चंदन से खड़ाऊ का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
3: भद्रे बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
5: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सिंह हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सिंह को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
3: फिर क्या हुआ?
5: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
6: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
3: भगवती आप?
5: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
6: हाँ वही है। प्रणाम भगवती। कल्याण हो।
3: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
6: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
3: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
6: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
2: मंत्री जी ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यह तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक थे।
6: भैया आप भी तो?
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
2: अरे शेर क्या हुआ? क्या हम लोग एक साथ रुक चुके
7: हैं? जान प्यारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
2: कोई हुआ ना जिसका भय था ठाकुर ने दिया है।
7: डरिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
2: हमारे सैनिक
8: ये सब करके घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लगो लुहान होकर इधर आ रहे हैं, अरे डाकुओं ने भैया को अकेले छोड़ दिया है।
6: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिन बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
3: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
6: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
5: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
6: वो क्या?
5: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
3: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
6: राजकुमारी, वो तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आदिराती का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
3: पिताजी का पत्र?

0: लाओ देखें।
1: ओह, मेरे जीवी से सैन्य को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
0: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के लिए सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला। भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
0: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
1: जयसेन,
2: आज्ञा देवी।
1: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी रावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमने वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, ये कोई विघ्न न डाले।
2: देवी की कैसी आज्ञा है।

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था।

0: उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
0: है,
1: लग जाता है।
0: टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं। उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना, ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की। पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना एक सेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे, तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर,
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो, वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी।
1: ठीक है।
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है भाई करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक उसकी रीलें चलती हैं और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओह यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं
1: जो 80s वाला दौर,
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है। हाँ और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ क्या ये वो, तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में,
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल।
1: हाँ, था। और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो हाँ, आगे बढ़ती हाँ। है, तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ,
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में, वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही बहुत ही, और
1: बहुत ही डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था,
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट, सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे, मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं, वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
0: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: अपना फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म के। और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे, ब्रश करके चाय, ये उनकी क्या कहते हैं,
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो, जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के

0: फंक्शंस में वो आते थे? क्यों?
1: नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
0: सख्त मनाही
1: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़, एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
0: अरे अरे अरे,
1: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
0: ओहो,
1: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
0: बिल्कुल,
1: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
0: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके, फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
0: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती है
1: वो यूट्यूब पर आज भी अगर आप

0: देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना।
0: ये
1: बिल्कुल,
0: सारी फिल्में
1: इश्क का
0: दिखाऊंगी।
1: रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: तो
0: अलग,
1: क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंद्र कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये कुछ
0: ओवर द
1: अलग
0: टॉप
1: था।
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकतनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निरो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी।
1: और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे

0: थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस
0: काम कर रहे थे बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तुपुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
1: राइट,
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
1: जी।
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
1: बिल्कुल,
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी।
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

आज युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी युवा दोस्त अर्पिता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी मेरी तरह एकदम स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। कार्यक्रम के शुरुआत में हम चर्चा करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम पर, साथ ही डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स में होगी रेडियो से जुड़ी रोचक बातें। वहीं हमेशा की तरह करंट अफेयर्स पे भी आपको अपडेट करेंगे और उन सब के साथ आज के न्यू हिट्स में चलेंगे गीत संगीत के ढेर सारे सिलसिले। तो आने वाले 30 मिनट बेहद खास होने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ यानी आपकी रेडियो दोस्त अर्पिता के साथ। आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं और बताते हैं आपको आज की चर्चा का विषय। दोस्तों, आज का विषय है अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी विविधता को बनाए रखते हुए सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। दोस्तों, कार्यक्रम के बिंदुओं पर बात करें तो पहला सूत्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा किसी भी समाज का आधार होता है, इसलिए इस सूत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक बच्चों का विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान का कार्य करना इस सूत्र कार्यक्रम का बिंदु है। वहीं दूसरे सूत्र की बात करें तो आंगनवाड़ी और प्रारंभिक शिक्षा, छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी

प्रोत्साहित किया जाता हो। पांचवा सूत्र कौशल विकास, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार देना। छठा सूत्र रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी बढ़ाना तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। सातवें सूत्र की बात करें तो वह है आर्थिक सहायता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ऋण, व्यापारियों, कारीगरों को आगे बढ़ाना है। आठवां सूत्र आवास और मूलभूत सुविधाएं हैं। सरकारी आवास योजनाएं, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं अल्पसंख्यक क्षेत्रों तक पहुंचाना। नौवां सूत्र है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, यही नौवें सूत्र का आधार है। वहीं अगर दसवें सूत्र की बात करें तो सांप्रदायिक सौहार्द देश में भाईचारा, शांति और आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए है तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देना। ग्यारहवें सूत्र की बात करें तो दंगा पीड़ितों का पुनर्वास। यदि किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था इसी कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। बारहवां सूत्र सामान विकास, अल्पसंख्यक संख्यक बहुदल क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर शिक्षा, स्वास्थ्य का विस्तार करना। तेरहवां सूत्र योजनाओं की निगरानी। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। चौदहवें सूत्र में सामाजिक समानता, यानी कि समाज के सभी वर्गों के बीच समान अवसर, सम्मान और न्याय की भावना को मजबूत करना है। वहीं आखिरी सूत्र पंद्रह सूत्र की बात करें तो समग्र विकास। इन सभी प्रयासों का अंतिम उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास करना तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना है। तो दोस्तों, यह थी अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम। अब बारी है कार्यक्रम में आगे बढ़ने की, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतरा।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: दोस्तों, इस अंतराल के बाद बारी है डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स की। तो दोस्तों, आज के डेली ट्रिविया में हमारा सवाल है कि भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत कब हुई थी। आप इसका जवाब हमें अभी भेजें हमारे मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है phair@gmail.com। दोस्तों, अब बारी है फन फैक्ट्स की। तो क्या आपको पता है दोस्तों कि रेडियो से देश में पहला न्यूज़ बुलेटिन कब ब्रॉडकास्ट हुआ था? हाँ दोस्तों, 19 जनवरी 1936 को पहला न्यू बुलेटिन रेडियो से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो दोस्तों, डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स के बाद बारी है कार्यक्रम के अगले स्तंभ में जाने की, यानी कि न्यू हिट्स की। तो आइए आज की न्यू हिट्स में सुनते हैं हमारा पहला गाना फिल्म तेरे इश्क से।

दोस्तों, इस गीत के बाद बारी है अगले गीत की। फिल्म एक था टाइगर से साजिद वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनिए यह प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गाने के बाद बारी है अगले गीत की। फिल्म भूल भुलैया 2 से श्रेया घोषाल की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से न्यू हिट्स के बाद बारी है करंट अफेयर्स पे आपको अपडेट करने की। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत को 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता मिली है। भारत अगले BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों, भारत ने जापान के साथ ग्रीन मेथेनॉल आपूर्ति का महत्वपूर्ण समझौता किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के डेब्यूटेंट बन चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण मैच में सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के 700 साल पुराने मुंगेर बरगद पेड़ की पहचान वैज्ञानिक रूप से दीनाकांत अब तक के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के रूप में हुई है। वैज्ञानिकों ने उन्नत रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग करके बिहार के मुंगेर में स्थित 700 वर्ष

पुराने बरगद के पेड़ को सबसे पुराने बरगद के पेड़ के रूप में सटीक रूप से दिनांकित होने की पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत और माली ने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले निर्यात प्रोत्साहन मंच का शुभारंभ कर दिया है। भारत माली निर्यात संवर्धन मंच की प्रमुख विशेषताओं का अन्वेषण करें, जिनमें व्यापार वृद्धि, प्राथमिकता वाले क्षेत्र, निवेश के अवसर और माली का आगामी निवेश मंच शामिल है। ACME ने जापान के साथ $1 अरब का ग्रीन मेथेनॉल समझौता किया है, जिसमें भारत की हरित ईंधन संबंधी महत्वाकांक्षा को बल दिया जाएगा। भारत ने समुद्र ईंधन के निर्यात के लिए अपनी सबसे बड़ी हरित साझेदारी हासिल कर ली है। और आपको बता दें कि ACME का जापान के साथ $1 अरब का हरित मेथेनॉल समझौता देश की स्वच्छ

हाउसफुल 5। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मधुवंती बागची और सुमंतो मुखर्जी को। अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है स्त्री 2 फिल्म से। आवाज़ें हैं दिव्य कुमार, सचिन जिगर और मधुवंती बागची की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: देवदास फिल्म में सुनिए पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित को।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक, सरक, सरक, सरक।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

अब सुनिए अनुराधा श्रीराम सोनू निगम और ए आर रहमान की आवाज़ों में ताल फिल्म का गीत।

अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे संगीता स्नेह से। 7:52 पर महिला T20 विश्व कप 2026 के तहत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच की कमेंट्री समापन तक हम आपको दिल्ली केंद्र के माध्यम से सुनवाएंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर 5:55 पर खेत खलियान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुनेंगे। 6:05 पर चिंतन मनन का प्रसारण किया जाएगा। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार अमरेश से सचिन कुमार की बातचीत आप सुनेंगे रेवेज विषय पर। 6:40 पर रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में अनिल कुमार आनंद से आप सुनेंगे सुगम संगीत। अंग्रेजी वार्ता के अंतर्गत अवेयरनेस टुवर्ड्स चाइल्ड राइट्स आप सुनेंगे ये वार्ता बेनी कोटियानी से। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियाँ और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे। सुबह 9:06 पर, 10:00, 11:00, 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर डॉक्टर अजय राय से सुगम संगीत सुनेंगे। 10:30 पर लोक गीत सुनेंगे रेणु भारती से। 12:00 नारी लोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। प्रस्तुत करता होंगे श्री पार्वती के। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1:00 लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे विवेकानंद ठाकुर से। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 3:00 बांग्ला गान सुन पाएंगे। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5:00 तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से आप तक पहुंचाएंगे।

कल शाम 5 बजे युवा सुनेगी अपना कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुत करता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे लक्ष्मी पांडे से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कुमारी स्वर्णा घोष को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनेंगे। 8:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुत करता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अली अकबर खां से राग सिरी सुनेंगे सरोद पर। 10:30 पर श्रोताओं के

ईमेल एवं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे, पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार,
1: साथ में अकलू के भी नमस्कार, लाखों भाई आप लोग नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब चकाचक से हो, अपनो बताओ।
0: सब कुशल मंगल है अकलू भाई। और अभी जानते ही हैं मानसून की शुरुआत हो गई है, और इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के नाम से मनाते हैं।
1: जुलाई में
0: बिल्कुल। और इस वन महोत्सव में प्रत्येक साल हम पेड़ लगाने का कार्य करते हैं।
1: प्रत्येक साल कौन चीज हमें से लगावो?
0: बिल्कुल,
1: है एक दिनों के या एक सप्ताह के कार्यक्रम नहीं के, बल्कि है सब दुनिया कार्यक्रम।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पेड़ लगाते रहो।
0: बिल्कुल,
1: अवसर भी खोजते रहो पेड़ लगावे के, कि कहियो जन्मदिन होले तो ओकरा पे लगा लिए, ठीक ने?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: शुभ अवसर छे तो ओकरा हो कार्यक्रम पर जे पेड़ लग पौधा लगा लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पौधा लगाने नहीं छे बल्कि ओकरो सुरक्षा भी करना छे, ताकि जब वो पौधा बड़ो होते फायदा देते।
0: बिल्कुल। और जानते हैं अकलू भाई, इस साल जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पेड़ लगाने की लक्ष्य रखी गई है वो 70 लाख है।
1: अच्छा।
0: 70 लाख पेड़ों को इस वर्ष लगाने की हमारी जो लक्ष्य है उनको पूरा करने में निश्चित रूप से हम लोग सहयोग करें। जरूर एक पेड़ अपने नाम और अपने परिवारजनों के नाम भी एक एक करके पेड़ लगाए।
1: यही वास्ता सरकार ने भी एक योजना चले लो चले, एक पेड़ माँ के नाम।
0: बिल्कुल,
1: एक पेड़ लगावो, पौधा लगावो अपने माँ के नाम से।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कहे कि माँ के नाम से के ना, घर के जितना सदस्य है सबके नाम से पेड़ लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पर्यावरण संरक्षण हो और इसके प्रति हम लोग जागरूकता भी फैलाएं।
1: जंगल का तो फायदा दे छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: छोटा बड़ा सब जीव जंतु ओकरा में रहे छे।
0: बिल्कुल,
1: है जे छे पर्यावरण का स्वच्छ रखे छे, साफ रखे छे। अभी कलो मानसून के बाद
0: बिल्कुल
1: जे बादल गरजते बरसते है केकरा कारण से? है पेड़ पौधा और जंगल के ही कारण से ना।
0: बिल्कुल,
1: अपना अहम भूमिका निभावे।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही साथ

0: बिल्कुल
1: रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी चीज छे लाखो भाई कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाड़ उतना जो पौधा लगाओ ओकरा संरक्षण करो ओकरा बढ़ा दो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: काम अपनो करते रहो
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही गांव घर में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं अकलू भाई, अपने खेती बाड़ी के कार्य हो चाहे वो जीविकोपार्जन के कार्य हो। अकलू भाई जिन कार्य या पेशा से या व्यापार से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को हम लोग पूरा करते हैं, चाहे वो भोजन आवास वस्त्र हो, इनके लिए जो धन कमाते हैं उसे ही हम जीविका या आजीविका कहते हैं।
1: हाँ।
0: और इस रोजी रोटी या भरण पोषण का साधन भी कहते हैं।
1: हाँ।
0: तो जीवन निर्वाह के इन्हीं साधनों में ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले लोगों विशेषकर महिलाओं द्वारा सरकार द्वारा प्रेरित होकर स्वैच्छिक संगठन जिसे हम स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं और जीविका अपने परिवार की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: देखो नामेज के स्वयं सहायता समूह
0: बिल्कुल
1: यानी कि आपनो सहायता खुद करो
0: बिल्कुल
1: कहलो गेलो छन कि भगवान ओकरे सहायता करे छे जे खुद के सहायता करे छे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यही वास्ते जे छे कि आपनो सहायता यानी कि आपनो पैरों पर खड़ा हुआ ताकि तो आगे बढ़ो एकरा वास्ते अकेला नहीं कहे छे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़े छे एकरा वास्ते समूह बनाए पड़ते तो समूह में जब काम होते है तो वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते तो यही वास्ते स्वयं सहायता समूह बनाए करी का आदमी सब जे छे वो आगे बढ़ी रो छे
0: बिल्कुल
1: खास कर गांव में
0: बिल्कुल। और इस समूह के इस संगठन के जो मुख्य लाभ स्थानीय तौर पे होते हैं अकलू भाई से मुक्ति मिल जाती है किसी भी कार्य के लिए और संगठन द्वारा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध भी कराए जाते हैं।
1: देखो लाखो भाई एकरा हमरा लगे छै दू फायदा होते एक तो सेठ साहूकार से जे कर्जा लेल जाय छले ओकरा में तो ज्यादे ज्यादे सूद खोजे ले
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब स्वयं सहायता समूह में जे समूह बनलो छै ओकरा में से जाय के तो रुपया लिए पारे छो और ओकरा में कम से कम ब्याज ले छै। दोसरो बात की छै कि अब तो बैंक से ही अगर पैसा लेल जाय छो कि हमरा कोनो काम करे वास्ते कोनो काम जैसे धंधा काम करे वास्ते जैसे हमरा पैसा चाहिए तो अब बैंक तो 24 घंटा खुल्लो नहीं रहे छे
0: बिल्कुल
1: एतवार का तो खुल्लो नहीं रहते तो ओकरा समय जैसे कम छे ना समय सीमित छे लेकिन स्वयं सहायता समूह चूंकि टोला पड़ोसा में खुल्लो रहे छे तो है जैसे रात के 12 बजे भी चाहिए पैसा तो चलो भाई हो स्वयं सहायता समूह पास गेलिए और ओकरा में जे भी सदस्य छै ओकरा पास गेलिए भाई हमरा इतना पैसा चाहिए अखनी जरूरी से जरूरी काम आबि गेलो छे तो तखनी भी लिए पारे छो है कितना सुलभ छे आरो आसान छे
0: बिल्कुल। देखिए अगलू भाई स्वयं सहायता समूह एक ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 20 लोगों का यानी महिलाओं का एक छोटा सा स्वैच्छिक समूह होता है और ये लोग आपस में ही थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं यानी कि जोड़ते हैं और फंड बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने ही सदस्यों को ब्याज पर लोन देते हैं। और जीविका में क्या होता है यह बिहार सरकार द्वारा एक परियोजना है जो ग्रामीण आजीविका मिशन का ही हिस्सा है और आजीविका मिशन यह जो है कि जीविका का काम बिहार में स्वयं सहायता समूह के गठन करना भी होता है, उन्हें प्रशिक्षण देना भी होता है और सरकारी फंड या बैंक से लोन दिलाना और महिलाओं के लिए रोजगार जोड़ना भी जीविका का कार्य है।
1: यानी कि जीविका जे कि बिहार सरकार के द्वारा चले लगलो एक परियोजना छिके
0: बिल्कुल
1: एकरा माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए वास्ते प्रेरणा देलो जाय छे
0: बिल्कुल
1: और ओकरा मदद भी करलो जाय छे कहीं दिक्कत होले समूह बनाए में तो ओकरा जे छे वो मदद करे छे बताबे छे कि करना छे केना समूह बने छे आरो ओकरा जे छे आगे बढ़े में भी सहायता करे छे
0: बिल्कुल। देखिए सरल शब्दों में कहें तो स्वयं सहायता समूह एक पेड़ की तरह है और जीविका उस पेड़ को उगाने वाली खाद और पानी की व्यवस्था है।
1: एकदम सही कहो लाखो भाई।
0: जीविका परियोजना के तहत बनने वाले समूहों को ही आमतौर पर जीविका समूह भी कहा जाता है और जीविका परियोजना बिहार राज्य के जो 38 जिले हैं और उनमें जो 534 प्रखंड है उन सभी में क्रियान्वित है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह के ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन जैसे कि सामुदायिक संस्था का गठन और उनका सशक्तिकरण किया जाता है।
1: और देखो लाखों भाई है स्वयं सहायता समूह,

0: बनेला से एक फायदा आरु होय छे कि ओकरो जे सदस्य छे वहां सनी मिली कर भी कोनो न कोनो रोजगार चाहे छे चालू कर ले छे।
1: बिल्कुल।
0: या फिर कोई भी आदमी छे वहां कोनो रोजगार कर चाहे छे। अब देखो गांव घर में तो छोटा मोटा बहुते रोजगार होय छे, जेना पापड़ उद्योग हो गेले छे कि नहीं।
1: बिल्कुल।
0: या फिर जे छ सिलाई मशीन खरीदना छे ओकरा चलाय फिर छे टेलर वाला काम करना छे, या फिर और बहुत छोटे छोटे काम छे लघु और कुटीर उद्योग छे, तो ओकरा शुरू करे के वास्ते जे छे स्वयं सहायता समूह और जीविका बहुते अहम भूमिका निभाय रहलो छे, है फायदा हो रहलो छे ग्रामीण खास करी के ग्रामीण महिला का।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही कौशल विकास और रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया जाता है, हस्तशिल्प जो है कि जैसे कार्यों के लिए भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है।
0: कोनो भी क्षेत्र ऐसा छुटलो नहीं छे, चाहे वो बुनाई के क्षेत्र है, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र यानी खेती बाड़ी के क्षेत्र है, कि फैनु हस्तशिल्प के क्षेत्र है, एकरा में सब काम आ भी रहलो छे।
1: बिल्कुल। और इससे क्या होता है कि सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है, महिलाओं को घर से बाहर निकल कर आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेने का मंच मिल जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: और देखो जहाँ पर 10 आदमी जुटे छे, रोजे जुटते काम धंधा करते आपस में बातचीत भी करते, तो की देश दुनिया में हो रहा छे यो तो पता चले छे कि हमारा वास्ते अच्छा छे कि हमारा वास्ते खराब छे, कि केना हमरा चलना छे, समाज में केना रहना छे, समाज में केना आगे बढ़ना छे, यह एक रोस्त जी छे फायदा होय छे।
1: बिल्कुल। कहने का मतलब ये है अगलू भाई कि आजीविका के जो साधन होते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सदस्य अपने छोटे छोटे उद्योगों को शुरू कर अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं।
0: कहर कलम छे कि एकरा में प्रशिक्षण भी देलो जाय छे।
1: बिल्कुल।
0: कि अगर लघु कुटीर उद्योग शुरू करेल चाहे छे तो जीविका के माध्यम से ओकरा प्रशिक्षण भी मिले छे।
1: बिल्कुल। और इससे क्या होता है बैंक भी जो है कि सहायता करती है। 6 महीने तक नियमित रूप से आप यदि बचत कर समूह में जुड़कर बचत करते हैं तो इससे क्या होता है आपको बड़े लोन प्राप्त करने के लिए योग्य भी हो जाते हैं। और इस समूह का अन्य भी कार्य है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य जांच जैसे कैंप को लगवाना, बीमा के लिए लोगों को प्रेरित करवाना और इनके लाभ दिलवाना, महिलाओं को जीविकोपार्जन के लिए लगातार प्रेरित करते रहना, इन प्रकार के संगठनों का मुख्य कार्य है अकलू भाई।
0: तो श्रोता भाई बहन जे भी है कार्यक्रम सुनी रहो छो, हम तो जानिए रहो छे कि सब है रोज सुनबे कर छे आकाशवाणी भागलपुर से ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, एक हम रोज हम असनी कुछ न कुछ चर्चा करते रहे छे कि तोरा फायदा वस्त रहे छे।
1: बिल्कुल।
0: आज हम असनी चर्चा कर लो छे स्वयं सहायता समूह आरो जीविका विषय पर, तो है जान लो कि स्वयं सहायता समूह की होय छे, केना काम करे छे आरो एकरा में जीविका न कतना बड़ा अहम भूमिका निभाय रहलो छे। त जल्दी से जल्दी छे तहूं अगर फायदा लेल चाहे छो तहूं अपनो आसपास के जे भी स्वयं सहायता समूह छे वहां जा समझो बुझो, आरो कोनो भी अगर छोटा मोटा उद्योग शुरू करेल चाहे छो तो वहां से जे छे पैसा लाइ करी के अपनो उपयोग ओकरो उपयोग जे छे करे पर छो आजीविका चलावे में आरो उद्योग चलावे में।
1: बिल्कुल। और परिवार की उन्नति के लिए भी। और इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अकलू भाई आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बक्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। 42।
0: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनू से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
1: बिल्कुल, देखिए अकलो भाई, मानव जीवन के जो 16 श्रृंगार होते हैं,
0: 16 श्रृंगार ने 16 संस्कार,
1: बिल्कुल संस्कार, तो उनमें से उपनयन संस्कार भी महत्वपूर्ण होता है।
0: देखो उपनयन,
1: हाँ,
0: उप मना हो छे नजदीक, आ नयन मतलब होले आँख, यानी कि आँख के नजदीक जाना हो छले कौन ची। प्राचीन काल में जब बच्चा बुतरु पढ़े लायक हो जाए ले तो ओकरा गुरु जी के पास गुरुकुल में ले चलो जाए ले, और वहाँ पढ़ाई या शुरू करे से पहने ओकरा उपनयन संस्कार कर लो जाए ले, जेकरा आजकल हम असनी जनेऊ संस्कार भी कहे छी।
1: बिल्कुल,
0: तो तभी जब उपनयन संस्कार हो जाए ले तब वो वहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू करे छले।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वही आब हो गेलो छे जनेऊ संस्कार में।
1: बिल्कुल,
0: तो चलो हम जान लो छे तोरो मनो में खुदबुदी लागलो छौ कि एकटा गीत सुनलो जाए एकरा संबंधित ना।
1: बिल्कुल,
0: केना कि लगन भी चली रहलो छे।
1: हां,
0: लगन नाम पर तो खूब खुश हो जाए छो लाखो भाई।
1: बिल्कुल, देखिए अभी लगन का समय है और सभी लोग अपने अपने परिवारजनों में विवाह उत्सव में जने उत्सव में धूमधाम से भाग लेते हैं, उत्सव मनाते हैं।
0: तो चलो हम उसने ओखरे से साथ जुड़िए छे।
1: बिल्कुल,
0: आज सुने छे निमन रंग जनेऊ गीत।

0: जिसे कहते हैं।
1: खास करी का अभी जो है बरसात के मौसम शुरुआत हो छे तो एकरा में बहुत प्रकार के चर्म रोग देखे मिली जाए, चाहे वो दांत खाज खुजली हो जाए या फोड़ा फुंसी निकली जाए, तो कौन कौन चर्म रोग हो छे और एकरो की कारण छे, केना एकरो निवारण होना छे, है विषय पर आज खनि हम असनी एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुनी छे। भेंटवार्ता कार्य के डॉक्टर आत्माराम।
0: बिल्कुल, शरीर पर चर्म, त्वचा, स्किन लिपटी हुई बाह्यतम आउटर मोस्ट रक्षक आवरण है जो शरीर का ही मुख्य हिस्सा है। यह अंतः त्वचा डर्मिस एवं बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से मिलकर बनता है। यह शरीर के लगभग 1.7 वर्ग मीटर है त्वचा के द्वारा ढकी है। त्वचा की मोटाई भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जहाँ हथेली एवं तलवों की त्वचा मोटी अधिक है, वहीं आँख के पलकों की त्वचा अत्यधिक पतली होती है। इसलिए त्वचा संस्थान इंटीग्रेटरी सिस्टम शरीर का अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल तंत्र अंगतंत्र है। त्वचा संस्थान के विभिन्न अवयव हैं, जैसे त्वचा, रोम, बाल, हेयर, नख, नेल्स, श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, तेल ग्रंथि, सीबम ग्लैंड एवं विशिष्ट कोशिकाएं। त्वचा के भीतर लाखों करोड़ों छोटी छोटी सीबम ग्लैंड हैं। ये सीबम ग्रंथियां होती है, इसे तेल ग्रंथियां भी कहते हैं। यह सीबम नामक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है। यह त्वचा पर एक परत बनाकर त्वचा में पानी की समुचित मात्रा को बरकरार रखती है। इसके साथ ही यह त्वचा को कुछ तरह के फफूंदी संक्रमणों से भी रक्षा करती है। यही कारण है कि वे बच्चे जिनमें सीबम का स्राव अपेक्षाकृत कम होता है, वे फफूंद संक्रामक फंगल इन्फेक्शन से अधिक प्रभावित होते हैं। यह ग्रंथि नालिका द्वारा रोम कूप हेयर फोलिकल्स में खुलती है। चेहरे पर यह ग्रंथियां सीधे त्वचा पर निजी क्षेत्रों पोर्स द्वारा खुलती है। इन ग्रंथियों का स्राव चिपचिपा तेलीय ऑयलियम गढ़ा होता है। इससे त्वचा शुष्क होने से बचती है तथा त्वचा में नमी मॉइस्चराइज रहती है। ज़्यादातर सीबेशियम ग्रंथियाँ छाती, चेस्ट, पीठ के ऊपरी भाग, अपर बैक, कंधे, शोल्डर, चेहरे, फेस आदि अंगों की त्वचा में पाई जाती है। जीवन के अधिकतर समय में ये ग्रंथियाँ समान रूप से कार्य करती है, परंतु वयस्क अवस्था एडल्टहुड में शरीर के अंदर पुरुष हार्मोन्स मेल हार्मोन्स के निर्माण एवं स्राव में परिवर्तन होने से सीबम का निर्माण बढ़ जाता है। यह स्राव ग्रंथियों में पास की अन्य मृत कोशिकाओं डेड सेल के साथ मिलकर रोम कूपों हेयर फोलिकल को बंद कर देता है। इस प्रकार मुहासे एक्ने त्वचा पर बन जाते हैं। जब इन ग्रंथियों का स्राव कम हो जाता है, जैसे वृद्धावस्था में, त्वचा शुष्क ड्राई हो जाती है। श्वेत ग्रंथियाँ अंतः त्वचा में, ये दूसरी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं जो श्वेत या पसीने स्वीट्स का निर्माण करती है। पसीना जल, नमक, लैक्टिक आयन एवं अन्य जल में घुलनशील पदार्थों का मिश्रण है। त्वचा में लगभग 20 से 50 लाख श्वेत ग्रंथियाँ होती है। पसीने के रूप में शरीर के भीतर का गंध बाहर जाता है। यह हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखती है, साथ ही शरीर में विद्यमान अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के माध्यम से उत्सर्जन भी करती है। अगर ये दोनों ग्रंथियाँ काम न करें तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। शरीर के भीतर ग्रंथियों द्वारा रसों का निर्माण तथा स्राव न हो तो शरीर में रोग आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर शरीर में उत्पन्न होने वाले

0: विषाक्त पदार्थों का विसर्जन एक्सक्रेशन न हो तो वे अंदर ही अंदर रहे तो भी मुख्य मनुष्य बीमार हो जाता है। अतः ग्रंथियों तथा छिद्रों को क्रियाशील बनाए रखने से ही मनुष्य स्वस्थ एवं निरोग रह सकते हैं। इसके नियमित कार्य करते रहने से पाचन शक्ति ठीक रहती है, आंतें ठीक से काम करती है, गुर्दे किडनी निरोग रहते हैं। इसलिए शरीर के इन सब अंगों ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए त्वचा को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि त्वचा ही संवेदनशील अंग तंत्र होती है जिससे उसे वातावरण में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का आभास हो जाता है। त्वचा को स्वस्थ एवं साफ सफाई रखा जाए तो बहुत से त्वचा रोग जैसे खाज, खुजली, फोड़े फुंसी, एक्जिमा, पित्ती, कील मुहासे आदि रोग नहीं होते हैं। लेकिन त्वचा के अस्वस्थ एवं गंदे रखने पर त्वचा या चर्म स्किन के अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तब त्वचा वातावरण में विद्यमान जीवाणु, विषाणु, फंगस तथा अन्य रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करने में असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस तरह त्वचा के अनेक संक्रमित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे एक्जिमा, खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी, कील मुहासे, रूसी, बाल झड़ना, डंड्रफ, एलर्जी, हर्पीस, सिफिलिस, सुजाक, घमोरी, दांत दिनाए आदि हैं, जिन्हें बाह्य लेपों तथा मरमों से दबाने या दवा द्वारा सारे लक्षण को दबा दिया जाता है। लेकिन त्वचा का काम भीतर के रोगों को तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल फेंकना है। अगर उन्हें मरहमों से दबा दिया जाए तो वे शरीर के भीतर ही रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप हृदय, हार्ट, जिगर, लीवर, फेफड़े तथा किडनी के रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले खान पान तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खान पान तथा साफ सफाई में त्रुटि आने पर ही शरीर में कई भी चर्म रोग का जन्म होता है। यदि इन दोनों पर यथाविधि पालन किया जाए तो कभी भी त्वचा रोग होने की संभावना तक भी उपस्थित नहीं होगा। वे हमेशा चर्म रोग या स्किन डिजीज से सुरक्षित रहेंगे। साफ सफाई के लिए पहले स्नान, नित्य प्रातः काल शौच तथा दंत धावन यानी मुंह धोने के पश्चात स्नान करना आवश्यक है। स्नान करने से शरीर की त्वचा के सभी छिद्र खुल जाते हैं, जिससे शुद्ध वायु का शरीर में भरपूर प्रवेश होता है तथा शरीर के भीतर की गंदगी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ख्याल रखें, भोजन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दुर्बल रोगी, वात व्याधि तथा हृदय रोग से पीड़ित मनुष्यों को गर्म पानी से स्नान करें। यदि त्वचा का कोई बीमारी है तो उसके साफ सफाई के लिए बरसात का पानी इकट्ठा करके इन्हें बोतल में बंद करके रख लें। प्रतिदिन नीम का पत्ता, थोड़ा सा 10-15 दाना गोल मिर्च, 4-5 बूंद नींबू का रस, कच्चे नारियल का पानी में घोलकर धूप में कुछ देर गर्म करने के लिए चौड़े बर्तन में 1-2 घंटा रख दें। फिर उसे त्वचा पर लगाकर आधा घंटे बाद उस बरसात के गर्म पानी से त्वचा को साफ कर दें। इससे आपकी त्वचा सुंदर, नरम, चिकनी एवं रोगाणुमुक्त बने रहेंगे। यदि त्वचा में खुजली बनी रहे तो रात में सरसों तेल में लहसुन को पकाकर रात में सोने के पहले लगावें। नियमित रूप से इस प्रकार सफाई करते रहें। सुपाच्य भोजन के साथ साथ अपने आहार में फल, हरा सब्जी, दूध, दही तथा खाना खाने के आधा एक घंटे बाद पानी का सेवन करें। गरिष्ठ भोजन जैसे तेल, घी, मांस, मछली, मीठा ना लें। चर्म रोग का होम्योपैथिक दवाएं इस प्रकार है, जो चर्म रोग में बहुत लाभदायक होते हैं। इस दवाओं के लक्षण के अनुसार लेने पर जल्द ही चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, जैसे ग्रेफाइटिस, सल्फर, मेजेरियम, पेट्रोलियम। ग्रेफाइटिस 200, यह एक्जिमा, खाज खुजली में बहुत ही लाभदायक दवा है। इस दवा का लक्षण पास चिपचिपा, शहद जैसा गाढ़ा, अत्यधिक खुजली हो तो इस दवा को 200 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट लें। मेजेरियम 200, यह चर्म रोग जिसकी त्वचा में मोटी हो तथा मोटा चमड़ा निकलता हो, बाल चमड़े में सड़ जाते हो, गंदा बदबू देता हो, तो इस दवा को उस चर्म रोग में प्रतिदिन सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से वह चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। पोटेंसी 200 में लें, दो बूंद सुबह शाम। सल्फर 200, यह चर्म रोग की मुख्य दवा है। किसी भी चर्म रोग में यदि अत्यधिक खुजली हो तथा खुजलाने के बाद बेहद जलन हो तथा रोगी स्नान करना नहीं चाहे, तो इस दवा से उसका चर्म रोग समूल नष्ट हो जाएगा। मात्रा 200 पोटेंसी में सुबह शाम दो दो खुराक लें। पेट्रोलियम, वैसा चर्म जो जाड़े में प्रकट हो तथा चर्म शुष्क हो, रात में खुजलाहट हो तथा इस दवा का प्रयोग करें। उस मात्रा 200 पोटेंसी में सुबह शाम लें।
1: बिल्कुल अकलू भाई, डॉक्टर आत्माराम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने चर्म रोग और उसके निवारण के विषय में इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी दी।
2: और देखो कि अभी तो हम सनी एक गीत सुनो छोड़ी ओकरा से ना जनऊ गीत।
1: बिल्कुल,
2: और एक संस्कार और है जो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
2: विवाह संस्कार।
1: विवाह संस्कार
2: तो है जे अभी मौसम चल रहा है शादी ब्याह रहा, एक विवाह गीत नहीं सुन लो तो फिर की सुन लो।
1: बिल्कुल, आइए सुनते हैं विवाह गीत।

0: बिल्कुल, विवाह गीत सुनकर हम लोग बहुत बहुत ही आनंदित हो गए हैं अगलो भाई, और कलाकार उषा देवी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी मौसम भी जो है कि परिवर्तित है, और आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग बीते 90 वर्षों से विभिन्न जानकारियों में मौसम की जानकारी प्राथमिकता रूप से हम लोग प्रत्येक दिन देते हैं।
1: जरूरी है ना।
0: बिल्कुल, और
1: तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार लाखों भाई,
0: बिल्कुल
1: पूर्वानुमान अवधि 4 से 8 जुलाई के दौरान
0: बिल्कुल
1: जिला में एक दो जगह पर गरज और चमक के साथ आंधी चले और हल्का सा मध्यम वर्षा होय के भी अनुमान छे।
0: बिल्कुल
1: ज्यादा ज्यादा तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 80 से 85%, जबकि दोपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान छे।
0: और वहीं पे कुछ समसामयिक सुझाव भी हैं। धान के फसलों के लिए वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं तथा बीज स्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करें। धान की किस्में सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और वहीं पर कुछ मक्का फसलों के लिए भी सलाह है कि खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें, और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे कि स्वान, देवकी, शक्तिमान 1 और 2, राजेंद्र सांकार मक्का 3, गंगा 11 शामिल है।
1: और जे किसान भाई सब्जी के खेती करे छे, हुनका वास्ते सलाह छे कि भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी के फसल में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करो। पत्ती खैलो वाला जे सुंडी छे और फल छेदक कीट छे, एकरो नियमित निगरानी करो। प्रकोप होला पर डायमेथोएट 30 ईसी के 1 मिलीलीटर प्रति लीटर

0: पानी के दर से छिड़काव आकाश साफ रहला पर करना छे। खरीफ प्याज के खेत में के वास्ते जे छे नर्सरी यानी कि जहाँ बीजस्थली छे ओकरा तैयारी जे छे आसमान साफ रहला पर ही करना छे। स्वस्थ पौध के वास्ते नर्सरी में गोबर के खाद जरूर से जरूर डालना छे। खरीफ प्याज के वास्ते N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर हैसनी किस्म अनुशंसित छे। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करना छे। बीज गिरेला के पहले बीजोपचार कर लेना चाहिए। बीज के दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना छे।
1: वहीं पर पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है कि दुधारू पशुओं को गर्मी का प्रभाव से बचाने हेतु छायादार एवं हवादार स्थानों पर रखें। उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं ताज़ा पेयजल उपलब्ध कराएं और गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवाएं।
0: तहत छले मौसम सूचना और कृषि संबंधित समसामयिक सलाह अब लगे हाथ हम एकटा रू विभागित सुनिश्चित।

0: बिल्कुल देखो, विवाह रह कि जनेऊ रह, ओकरा में सबसे जे महत्वपूर्ण और जे शुरुआती रस्म हो छे ऊ हो छे हल्दी लगाबे के।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हल्दी तबन लगते जबकि खेतों में हल्दी उपजेबे
1: हाँ
0: ना, है तो जरूरी छे कि खेतों में हल्दी उपजाना छे। और हल्दी के उपयोग तो बहुत ही छे, सब्जी में दे दो,
1: बिल्कुल
0: कंडो चोट गांठ लगी ले तो हुंडो हल्दी लगा दो ना, जा
1: बिल्कुल
0: थोड़ा बुखार आबि गेलै या सर्दी खांसी छे तो गरम दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के पीबी ला तो जे छे वो ठीक हो जाए छे। तो
1: बिल्कुल
0: हल्दी बहुते काम के चीज़ छे, तो यह वास्ते हल्दी के खेती भी होना जरूरी छे। तो हल्दी के खेती केना होना चाहिए, केना का खेती करबै जे कि ज्यादा ज्यादा हल्दी उपजा, और जब ज्यादा हल्दी उपजतै तो किसान भाई के दू पैसा हाथ में अतै ताकि
1: बिल्कुल
0: वो उन्नति करा पड़ते। तो यही वास्ता यही से संबंधित हम सुनी चलो है पूर्व प्रसारित वार्ता सुनै छियै हल्दी की खेती विषय पर वार्ताकार के राजेश कुमार घोष।
1: मसालों में हल्दी का एक विशेष स्थान है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में मनमोहक रंग देने, सब्जी, दाल तथा अचार आदि बनाने में विशेष रूप से किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग दर्द, चोट, नेत्र रोग आदि में विधिवत किया जा रहा है। उद्योगों में इसका उपयोग ऊन, सिल्क तथा कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। इसके पाउडर का प्रयोग सौंदर्य बढ़ाने और कहीं कहीं सुगंध के लिए इसमें पाए जाने वाले टेमरॉल के कारण किया जाता है। हल्दी की मांग न केवल अपने देश में वरन विश्व के सभी भागों में व्यापक रूप से है। इसे बाहर भेजकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी खेती उन्नत तरीके से करें जिससे इसकी उपज क्षमता बढ़ाई जा सके। जहाँ तक हल्दी की खेती के लिए जलवायु की बात है तो इसके व्यवहार के लिए गर्मतर जलवायु सबसे अच्छा है। हमारे देश में इसकी खेती समुद्र तल से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई तथा जहाँ 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा होती है वहाँ की जा सकती है। इन दिनों बिहार और झारखंड में भी इसकी खेती कहीं कहीं की जा सकती है। हल्दी की सफल खेती के लिए बुआई तथा जमाव हेतु कम वर्षा, पौधों की बढ़वार के समय अधिक वर्षा तथा फसल पकने के एक माह पूर्व सूखा वातावरण अधिक उपयुक्त है। हल्दी की खेती के भूमि और उसकी तैयारी की हम बात करें तो इसकी सफल खेती अच्छी जल निकास वाली उर्वर दोमट या बलुई दोमट भूमि में होती है। हल्की भूमि अधिक पैदावार के लिए सबसे अच्छी रहती है। इसके लिए रबी की फसल काटने के बाद अप्रैल या मई के शुरू में मिट्टी पलटने वाले हल से 2 बार खेत की गहरी जुताई करके 6-7 जुताई देसी हल से करना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और गांठों को फैलने का पर्याप्त अवसर मिल सके। तैयार खेत को छोटी छोटी क्यारियों में सुविधानुसार बांट लें। हल्दी के सफल उत्पादन के लिए खाद तथा उर्वरक समुचित मात्रा में समयानुकूल प्रयोग करना जरूरी है। इसके लिए अंतिम जुताई से पूर्व 20-25 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट को खेत में बिखेर कर भूमि में भली भांति मिला दें। अंतिम जुताई करते समय 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। बुआई के लिए रोग मुक्त स्वस्थ गांठों का ही चयन करना चाहिए। प्रत्येक गांठ में कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए तथा उसका वजन भी कम से कम 25 ग्राम तक होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 12 से 15 कुंटल कच्ची गांठें पर्याप्त होती है। गांठों को बोने से पूर्व यदि उसे भीगे हुए बोरे में 24 घंटे तक लपेट कर रखा जाए तो अंकुरण अच्छा होगा। बुआई के पूर्व इनिशान 6 नामक दवा के 0.1% का घोल बनाकर बीज के प्रकंदों को 1 घंटा तक उपचारित करना चाहिए। हल्दी की बुआई मध्य मई से जुलाई तक की जा सकती है। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कहीं कहीं तो मेड़ बनाकर भी बुआई की जा सकती है। बुआई के 15-20 दिन बाद नए कल्ले अंकुरित हो जाते हैं। गर्मी, नमी तथा अत्यधिक वर्षा से बचाव के लिए बुआई के तुरंत बाद खेत की पत्ती, घास फूस या गोबर की सड़ी खाद की पतली तह जो लगभग 50 सेंटीमीटर मोटी हो से क्यारियों को ढक दें। देश के अलग अलग भागों में हल्दी की अलग अलग किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इसकी उन्नत किस्म राजेंद्र सोनिया RS-10 है। हल्दी की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए निकाई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का कार्य आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। भूमि में वायु संचार के लिए 3-4 गुड़ाई जरूरी है। गुड़ाई करते समय 2 बार मिट्टी चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। वर्षाकालीन फसल होने के नाते हल्दी को विशेष सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किंतु मई में बोई गई फसलों को वर्षा के पूर्व 2 से 4 सिंचाई जरूरी है। बरसात समाप्त होने पर 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। हल्दी की फसल की पत्तियां जब पीली होकर सूखने लगती है तो यह खुदाई के लायक हो जाती है, यानी बुआई के 210 दिनों बाद इसकी खुदाई की जा सकती है। खुदाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रंथें कटने ना पाएं। फसल चक्र के लिए हल्दी प्याज, हल्दी गेहूं तथा हल्दी मूंग मुख्य फसल है। बगीचे के बीच में भी इसकी इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। बोई गई किस्म तथा अपनाई गई उन्नत विधियों का हल्दी की उपज पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसकी औसत उपज 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टर है। कच्ची हल्दी से सूखी हल्दी तैयार करने पर इसकी मात्रा 20% रह जाती है। हल्दी की फसल में कुछ कीट व्याधियों का भी प्रकोप होता है, जिसकी रोकथाम आवश्यक है। हल्दी का एक कीट है तना छेदक। यह कीड़ा पौधों के नए बढ़ते हुए भागों पर लगता है और इसका रस चूस लेता है, जिससे कि पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित शाखाओं को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। क्लोरपाइफास 20 cc घोल नमक दवा का 2.5 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करना चाहिए। हल्दी का एक दूसरा कीड़ा है थ्रिप्स। यह भी पत्तियों के रस को चूसता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम भी उसी दवाई यानी क्लोरपाइफास 20 cc से किया जा सकता है। हल्दी के फसलों पर लगने वाले रोग में एक है पर्णचित्ती रोग यानी लीफ स्पॉट। यह रोग टेफराइना मैंकुलास एवं कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी नामक कवकों के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों के ऊपरी सिरे पर भूरे पीले रंग के अनगिनत धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में बढ़कर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। फलतः पत्ती सूख जाती है। दूसरा रोग है बिगलन यानी रूट रॉट। यह पीथियम मैग्निकोलम नामक कवक के कारण होता है, जिससे पत्तियां सिरे से सूखनी शुरू होती है और अंत में सूख जाती है। जड़ मुलायम होकर सड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत को साफ रखना चाहिए। इसके अलावा 1% बोर्डो मिश्रण या ब्लाइटॉक्स 50 या फाइटोलॉन या डायथेन Z78 में से किसी एक से 0.2 से 0.3% घोल बनाकर 20-25 दिनों पर छिड़कने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। कच्ची हल्दी से व्यापारिक हल्दी तैयार करने में मुख्यतः 3 क्रियाएं करनी पड़ती है। गांठों को उबालना, उन्हें सुखाना और अंत में चमकाना। हल्दी की गांठों को अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना चाहिए। फिर सुविधानुसार लोहे या तांबे के कढ़ाई में या मिट्टी के बर्तन में हल्दी की गांठें तथा उसके ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरकर कढ़ाई को आग पर चढ़ाकर ऊपरी भाग को पत्तियों से ढक दें और इसे तब तक उबालें जब तक एक विचित्र प्रकार की गंध के साथ सफेद धुआं न निकलने लगे। उबाली हल्दी की गांठें मुलायम हो जाती हैं, यही पकी हल्दी की पहचान है। फिर इन गांठों को कढ़ाई से निकालकर लगभग 10-15 दिन तक धूप में सुखा लें। गांठों को सुखा लेने के बाद उसे मसल दें, जिससे गांठों में लगी छोटी छोटी जड़ें हट जाएं। सुखाई हल्दी की गांठों में रंग देने के लिए उसे पॉलिश करें। उसके रंगने के लिए लकड़ी के ढालाकार बर्तन का प्रयोग करें। सुखाई हल्दी बर्तन में रखकर थोड़ा हल्दी का पाउडर डालकर खूब मथें। उसके बाद हल्दी को अलग अलग आकार में छांट लें। बताई गई विधि से अगर हल्दी की खेती की जाए तो किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिलेगा।
0: तो है चले हल्दी की खेती विषय पर वार्ताकार राजेश कुमार घोष से बहुत अच्छा जानकारी भर लो वार्ता।
2: देखिए हल्दी जो है बहुत ही प्राकृतिक रूप से फायदेमंद होता है अकलो भाई
0: और लाखों भाई। तो चलो अब चलता चलता है पूर्वी सुनिश्चित।

0: यही पूर्वी के साथ अब आज के ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो जाए। मिलवे अगला कार्यक्रम में, तब तक हमरा दा विदा, सबका अखलू के नमस्कार
1: और साथ में लाखों का भी नमस्कार।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से प्रस्तुत करता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजे
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के 2 नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर विश्व प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों को और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। दोनों ड्राफ्ट झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं। सरकार का कहना है कि व्यापक सुझाव के आधार पर नीतियों को अंतिम रूप देकर राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन इसके बावजूद कई महान राष्ट्रनायकों के योगदान को जनता तक नहीं पहुंचाया गया। श्री वर्मा आज रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एकता और अखंडता की रक्षा के जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के विषय को लेकर भारत माता के चरणों पे अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई, जिस व्यवस्था ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि आज के राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान लोगों के योगदान के बारे में जानकारी नहीं रखते।
1: इधर कांग्रेस पार्टी के नेता और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तभी से ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर से आम जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है।
3: देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे सब अभी हमारे हैं, चाहे नीट की बात करें, अभी जो आम उपभोक्ता एथनॉल की बात करें, या फिर राम मंदिर की जो चोरी की बात करें, इन मुद्दों पे सरकार ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजें लाती है। देश के समक्ष बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं, उन बातों को प्राथमिकता से लेनी चाहिए, लेकिन सरकार इस प्रकार के एजेंडे वो सेट करती है।
1: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत पलामू जिले में आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जन प्रतिनिधियों और मार्क वोटरों के गणना प्रपत्र EF को भरवाया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, स्थानीय

0: क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। हम सब 20,000 VLS को अपन किया और सभी को भी बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया। हम ब्लॉक संवाद ऑर्गेनाइज करके सभी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी मेंबर्स और VLS को बुला के ट्रेनिंग दिया। मेरा विश्वास ये है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह SIR प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे।
1: केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी सेवा से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने में रचनात्मक भूमिका के लिए कर्मचारी संगठनों की सराहना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आयोग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकायत आयोग में कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आयोग जनजाति समुदाय की रक्षा कवच है और समाज के संरक्षण के लिए पूरे देश में काम करता है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुँच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के बड़कट्ठा अंचल स्थित मौजा बेरू कला की 117.68 एकड़ विवादित जमीन मामले में 118 रैयतों को अंतरिम राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने बरही के अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। भ्रष्टाचार में झारखंड में भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों में पिछले 3 वर्षों के दौरान कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में भ्रष्टाचार के 67 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2023 में ये संख्या घटकर 55 रह गई, जबकि वर्ष 2024 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 58 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2022 की तुलना में राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कुल मिलाकर कमी दर्ज की गई है। रांची के धुर्बा में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले की सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
3: मुख्य तौर पे रथ यात्रा का पूरा रूट है उसको सैनिटाइज करना है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना है ताकि रथ यात्रा के बीच में कोई भी किसी तरह का हादसा नहीं हो। उसके साथ साथ वॉलंटियर्स हैं उनका ऑप्टिमल यूज हो पूरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए, तो वही सब व्यवस्थाओं पे आज चर्चा हुआ है और उसका एग्जीक्यूशन हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे।
1: मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों के लगभग

0: 100 जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम कल और परसों हैदराबाद के गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास के बाद टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर वुशु प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:12 हुए हैं। लोकगीत सुनिए संगीता स्नेह से। आरंभ में इनसे सुनिए ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे संगीता स्नेह से लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आपने सुना ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। पटना जिले की बाकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने श्री किशोर के नाम का ऐलान किया है। पार्टी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है उसका सम्मान करते हैं।
2: बाकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं।
0: इधर भाजपा ने भी बाकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि

0: सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज 80वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में आयोजित जयंती समारोह में कहा कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पासवान की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का विस्तार किया जा रहा है।
2: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं।
0: इधर पटना समेत प्रदेश भर में रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांग

0: करने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हॉर्स फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के दोइया में शांति मनी पेपर मिल के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पेपर मिल परिसर का भ्रमण कर उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण भी किया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गया जी और जमुई समेत प्रदेश के 30 से अधिक प्रमुख शहरों में आधुनिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, शॉपिंग क्षेत्र, होटल और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से आज पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के बगहा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में तीजन बाई के योगदान को देश श्रद्धापूर्वक याद रखेगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री चौधरी ने कहा कि उनके निधन से भारतीय लोक कला और संस्कृति को अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मंझोलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS गुरुप्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक, सिग्नल प्रणाली, इंटरलॉकिंग व्यवस्था और रेलवे क्रॉसिंग समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में CRS ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी किया। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही लाइन होटल के पास चार पहिया वाहन ने एक खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संचालित खनन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत TB मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने कहा कि सरकार जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
3: आकाशवाणी एट 90 की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने इस मौसम में 26,000 हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ फसलों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। युवा रोजगार और कौशल विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से समाहरणालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही स्वरोजगार तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, मानव तस्करी की रोकथाम और अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के पुनर्वास की समीक्षा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंडल कारा में स्प्रिया योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षात्मक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल केवल सजा काटने का स्थान नहीं बल्कि सुधार गृह है और बंदियों को पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कृषि विभाग के तत्वावधान में खरीफ महाअभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के आधुनिक ढंग से खेती, उन्नत बीजों, वैज्ञानिक तकनीकों तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर बारिश और संभावित बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की सभी तैयारियां समय से पूरा करने, आपदा संपूर्ति पोर्टल पर लाभार्थियों का विवरण अपडेट करने और नए पंजीकरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंककार सलाहकार सह समीक्षा समिति की बैठक में विभिन्न बैंकों एवं ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित बैंक प्रबंधकों को शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने तथा पात्र उद्यमियों को रियायत दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से जिला इकाई ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की सांकेतिक चाबियां, जॉब कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज भी वितरित किए गए। जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। ग्राम विकास सभाओं में पंचायत

0: विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कहा कि जन भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया, जिसे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सुना। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई जी राम जी योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला मुख्यालय में जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को योजनाओं के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की जानकारी दी गई। जिले में मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तजिया जुलूस निकाले गए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत विधिक सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके संचालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कामगारों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप 2026 के तहत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच की कमेंट्री सुनवाने के लिए हम आपको अपने दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।
1: हम ये कहते हैं, एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्था सारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश चौली।
2: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग।

17 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 17 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 17 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 17 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 17 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 17 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 17 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, और उस इंसान से जिसने तुम्हें, तुम पर भरोसा नहीं किया,

0: नीचे गेंद और इस गेंद को जो कि टप्पा खाने के बाद नीचे रह रही थी स्विंग कर दिया कलाइयों के सारे मोड़ा ऑन साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे की ओर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई एक रन और सिंगल मिला और ये स्थिति है गार्डनर अभी ले में नहीं आ पाई।
1: आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक

0: औपचारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलू का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
4: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Khamenei. State television showed Khamenei's three sons, Masoud, Meesam, and Mostafa, leading funeral prayers at the Grand Moshalla in Tehran alongside President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf, and senior commanders. However, there was no sign of his successor, Mostafa Khamenei. The funeral procession will continue over the next few days, concluding with a burial in the holy city of Meshahat on the 9th of this month. Public mourning will continue for 40 days thereafter. Tensions have escalated in Pakistan-occupied Kashmir after one person was killed and several others were injured when Pakistan Rangers allegedly opened fire on protesters. The incident comes amid a crackdown on demonstrations demanding basic rights, economic relief and political freedoms. Media reports also said that more than 600 civil rights activists have been arrested following anti-Islamabad protests in the region. Meanwhile, overseas Kashmiris held a protest gathering in London today in support of the demonstrators. On the other hand, in Pakistan, protests have also intensified at Karachi's Abbasi Shahid Hospital, where junior doctors are demanding payment of pending stipends, better security and improved hospital facilities. The protesting doctors warned that they would suspend outpatient services if the demands are not addressed. In the ICC Women's T20 World Cup final, England were 91 for 4 in 13.5 overs against Australia at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. In the Wimbledon tennis, American Jessica Pegula defeated compatriot Iva Jovic 4-6, 6-3, 6-1 in the women's singles to reach the quarterfinals in London today. The other match between Czech Republic's Karolina Muchova and compatriot Barbora Krejcikova is underway. In the other round of 16 matches, top seed Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka and Switzerland's Belinda Bencic and meet Coco Gauff of the United States later tonight. In the men's singles, the round of 16 match between Serbia's Novak Djokovic and Roman Sufelian of Russia is underway. Later tonight, top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave revered shrine in the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay a foundation stone of 2,500 crore rupee defense manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखुसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहीं अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट में कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोस की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिले एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाजे में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकामात लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर

0: पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोरे आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाकये में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाकया बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहरों के बाद खत्ते में 600 से ज्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफा ने तेहरान के मुसल्ले आजम में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियां, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद बनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें खत्म हुई।
1: की बात सुनी जाती है।

Dominique.

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त रात्रि के 11:40 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। सुबह 5:48 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा चाहते हैं। शिवरात्रि, जय हिंद।